ਏਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਪਹਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ।

गुरमत खोज परे तब पकरे, तनसाव तरास उबरया। पाखंड भरम उपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख

कूप गोज खिन काढ़े, जो ओडा कूप गोज खिन काढ़े, त्यों सतगुर वस्त लहाई है। जिन्हें ऐसा सतगुर साध ना पाया, ते त्रिग त्रिग नर जीवाई है। जन्म पदार्थ

खेल तुझ महे समाहे, ज्यों पावे त्यों राख ले, सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवां।

यह मृतक मड़ा है शरीर है सब जग जित राम नाम नहीं वसया राम नाम गुर उदक चो आया फिर हरिया हो वारसया मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजया।

सहज अवल धूड़मणि गाडी चालती, पीछे तिनका ले कर हांकती। जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती, सर धोवन चाली लाडली रहाओ, तो भी तो वह बिरह बिराता,

निस्बासर नखयत्र बिनासी रव ससियर बेनाधा गिर बसधा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलाधा एक साध बचन अटलाधा।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया। गुर प्रसादी अकथो कथिये

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सत्संगत की तूर परी उड़ नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहा जाहर नवी

हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करै हर जन को मिलिया सुख पाइए सब दुर्मत मैल हरै हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्त है जा हर गुण बिचरै हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरै जिन एह प्रीत लाई सो जानै कह जानै जिस मन धरै जन नानक हर देख सुख पावै सब तन की भूख टरै मल्हार महला चौथा।

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौ जल जगत तरावै रहाउ, जो गुर कहो जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अगे

दिवसै हौ तिनकै सद बलजांत। ज्ञानी हर बोलहु दिन रात, तिनकी तृष्णा भूख सब उत्तरी, जो गुरमत राम रस खांत रहाव। हर के दास साध सखा जन, जिन मिलिया लह जाए प्रांत, ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ है

कान हर बरस सगल जग छाया, पय कृपाल प्रीतम प्रभ मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहा। मिटे क्लेश तृष्ण सब बूझी।

ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावे गो। जो जो भगत होए सो पूजहो परमन परम चुकावे गो। जात न जात देख मत परम हो सुख जन।

ग्रहार्थ कहै साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नान कहै मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं बरधंत जरुआ।

पुरत हारं कुल है समूह सगल उदहारं बड़ भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूह नहें।

मनोरथ कोए ना पूरे चाले ऊठ निराश। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कत है न।

अकाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरहो अगम अपार हो श्री पतनाथ शरण नानक जन श्री पतनाथ।

मुन जन गाव है अचल छला। गाव है गुण तोम अटल मंडल वै, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाने ओ। जप

गुर अमर गुरु श्री सत कल जुग राखी पात अगहन अगन देखत गात चरण कवल जास गुर अमर

पुन दुखन नाश सुखदायक सूरौ जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरौ पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। फुन गुरु जल बिमल अथा मज्जन करहो, संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सर। सदा निर्वैर निरंकार निरपहो जपै, प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हर। मुग्ध मन भ्रम

नाम खेल गूढ़ो कियो हर राय संतोख समाचर्यो बिमल बुद्ध सतगुर समाणो आजोनी संभव्यो।

काल जुग जहाज अर्जुन गुरु सगल सृष्ट लग बेतर हो तेह जान जा चहो जगत्र पा।

भुयंगम सर्प है जग केरिया बिखमाए, बिख का मारन हर नाम है गुरगर्ड शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मेरे सतगुर निर्मल हो।

जिनको पूर्व लिखिया तिना भेटिया गुरु गोविंद, नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद। सतगुर सेवन अपना गुर शब्दी विचार, सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रख है।

सतगुर मिले होमे तजै विकार हर नामा जप सुख पाया जन नानक शब्द विचार। दिन सतगुर

हर मंदिर वस्त अनेक है नवनिध नाम संहार धन भगवंती नानका जिन्ना गुरमुख लद्धा हर पाल वडभागी गढ़ मंदिर खोजया हर हिरदय पाया नाल मनमुख दह दिस फिर रहे अत तिशना लोभ विकार माया मोह न चुकई मर जम्मह वारो वार सतगुर सेव सुख पा।

जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी।

फेर के अगे रखिए जित दिसे दरबार, मोह के बोलन बोलिए जित सुन करे प्यार। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार, करमी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। नानक एवे जानिए सब आपे सच्यार, खापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप निर

दुख पर हर सुख कर ले जाए। गुरुमुख नादं गुरुमुख वेदं गुरुमुख रया समाई, गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई, गुरा इक देव जाई सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। तीरथ नावा जे तिस भावा विन पाने के नाय करी, जेती सिर्ठ उपाई वेखा विन कर्मा के मिले लई। मत विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी, गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जप कीरत जगले, जे तिस नजर ना आवई ता बात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस्तरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे, सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिए तरत तवले आकाश, सुनिए दीप लो पाताल सुनिए पोह न सके काल। नानक भगता सदा विलास सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए ईश्वर बर्मा इंद सुनिए मुख सलाहन मंद। सुनिए जोग जुगत तन पेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद। नानक भगता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सत संतोष ज्ञान सुनिए अठ का स्नान। सुनिए पड़ पड़ पावे मान सुनिए लागे सहित्यान, नानक भगता सदा विगास।

तापसाओ एको कवाओ किस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कौन का विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद वावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख बाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कौन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलवड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल पखाहे असंख निंदक सिर करें पार नानक नीच कहे विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख ठाव अगम अगम असंख लो असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुणगाहा अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात। सैस अठारह कहन कतेबा अपनू इक तात। लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया। नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद ना जानिए। समुंद सहा सुल्तान गिरहा से ती माल तन। कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो ना विसरे। अंत न सिखती कहन न अंत। अंत ना करने देन ना अंत। अंत ना देखन सुनन ना अंत। अंत ना जापे क्या मन मंत। अंत न जापे कीता आकार। अंत न जापे पारावार। अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे। एहो

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना समाए केते मंगे जोद अपा।

रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांसी कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख सरम पत चोली ध्यान की करे विपूत खिंसा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीत जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कटवा जैनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान इक संसारी इक पंडारी इक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवें चलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किच पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश इक दूजी बोला खोए लख होवे लखवीस लख लख गेड़ा आछिए एक नाम जगदीश एक राय पत पवड़िया चढ़िए होए इक्कीस हूं गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े थीस आखन जोर चुपैने जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मरन न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती छित्ती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा कह जाए तर्म खंड का एहो तर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिए रूप रंग के वेश केतिया कर्म पूमी मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मुन केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पाप नरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत नांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद धर्म खंड की बाणी रूप तिथे कारत करिए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे करिए सुरत मत मन बुद्ध तिथे करिए सुरा सिदा की सुद्ध

ताके रूप ना कथने जाहे, ना ओहे मरे ना ठागे जाहे। जिनके राम वसै मन माहे, तिथे भगत वसै के लो, करें आनंद सच्चा मन सोए। सत खंड वसै निरंकार, कर कर वेखे नजर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पांड, जे को कथे

गावन सुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे गावन सुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे गावन सुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोन तेरे सदा सवारे गावन सुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दरनाले गावन सुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन सुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुर्ग मच पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठ की रतनाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे धारे ते तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर के ते तुदनो गावन से मैं चितना आमन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सत साहेब साचा साची नाई है भी होती जाए न जाती रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाय कर कर देख है की ता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करती फिर हुक्म न करना जाई सो पाता हो सा पत साहिब नानक रहन जाई आसा महला पहला सुन वड्डा आख है सब कोए केवट वड्डा जीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवट चीरा रहा सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुरगुरहाई कह ना जाई तेरी तिलवड़े आई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुदवे सिद्धि किने न पाया कर्म मिले नाही ठाक रहाया आखन वाला क्या विचारा सिफती परे तेरे पंडारा जिस तू दे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा मेला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आखन औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे पूख उत पूख है खाए चलिए दुख तो क्यों विसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए राव साचे नाम की तिलवट आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाए वदा न हो वे काट न जाए

नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ, हर जन के वड़ पाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन सुरमस्तक लिखिया लिखास, तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास, राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित में उद्दम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंतु उपाय, ताका रिजक आ गए कर तरया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया, गुर प्रसाद परम पद पाया, तू के कास्त हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुख बनता, कोई न किसकी धरया, सिर सिर रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया, उड़े उड़ आवे सह कोसा, तिस पाछे बकरे चरया, तिन कमन खलावे कमन चुगावे, मन में सिमरन करया, सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर कल करया, जन नानक बल बल सद बल जाये, तेरा अंत न पारा वरया, रागा

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हाँ कुछ बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक परे बहु सिमरत सास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वर्ते जी तू आपे करे सोई तुझ आपे सिरत सब उपाय जी तुझ आपे सृज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जनोई आसा मेला चौथा तू करता सत्यार मैं।

कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गुआया, सुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया,

अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, चित सरवर लै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूर मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ, ना हूं जती फती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिनको ना ही विसरिया, आशा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कित न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, संग जाम लाग पव जल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै, रहाओ, जप तप संजम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हमनी।

आओ नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देवो सज्जन आशीषड़िया जो होवे साहिब त्यों मेल कार

सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, यहाँ खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरहारे, मन गुर मिल काज सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एव रस, अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहाजो, हर गुर ते मने बसेरा, निज कर महल पाओ सुख सहजे, बहुर न होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख विदाते, सरदा मन की पूरे, नानक दास।

चाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखे।

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सुल्तान होवा मेल

चंद सूरज दोई गुफे न देखा, सुपने सौन न थाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हों केवड आखाना, साचा निरंकार।

लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाओ, लेखे वाट चलाया, लेखे सुन वे खाओ, लेखे साल वाई है, पढ़े के पुछन जाओ, बाबा माया।

रोवन वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए साचा साहिब।

जिथे नीच संभालियन तिथे नजर तेरी बख्शीस। श्री राज मैला कैला लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुर्दार। पर निंदा परमल मुख सुदी अगन क्रोध चंडाल। रस तस आप सलाहना एक कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए। नीच कर्म बहरोए रहाओ रस सोयना रस रूपा कामन। रस परमल की वास रस कोड़े रस से जा मंदर। रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कह कट नाम निवास। जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान। फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान। ज्योतिष पावे से पले होर के कहन वखान। तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले।

तामन खीवा जानिए जा मैली पाए था नाव नीर चंगे आया सत परमल तनवास ता मुख वो वै उजला लख दासी इक दात दुख तिसे पै

कारमंदर खुशी नाम की नजर तेरी परवार। हुकम सोई तुद पावसी होर आखन बहुत अपार। नानक सच्चा पातशाह पूछ ना करे विचार। बाबा होर सोना खुशी कुआर जित

सच मिले सच उपजे सच में साथ समाए सुरत होवे पत उगवे गुर बचनी पौ खाए नानक सच्चा पातशाह आपे ले मिलाए श्री राग महला पहला पली सरी।

तात मिले पुन तात कहो सुस्ती सुप्त समाए। लाल गुलाल गह बरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोषिया हर जप एक।

प्यार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार तिद दिद कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

कर्म मिले सच पाए, गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कारे सच मिले, गुरमत पल्ले पाए सो नर जमे ना मरे ना आवे ना

नानक दर प्रदान सो दर्गे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर

नाम पैसा चुराती देहुरी जीवा सच सुआओ सच्ची नजर निहाली है बहुर ना पावे ताओ साचे ते पवना भया पवने ते जल होए जल के त्रिभुवन साजिया।

तेरा रोग वड्डा मन माहे क्यों दर्दे पत पाई है जहाँ हर नवसे मन माहे गुर मिले सुख पाई है अगन मरे गुण माहे मन रे एनिस हर गुण सहारे।

मन में मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर श्री राग महला पहला पर में पाए ना विजवे जे पावे दिसंतर देश अंतर मैल।

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुर पुरख न पेट्यो, सो पौ जल पचे पचाए। ए मान के जियो निर्मोल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु

तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल अग्गे साओ सुजान है लैसी वस्त समाल पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर ले।

ए जात ना पत है खोट ना सी जिस कोए खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए नानक मन समझाई है गुर कै शब्द सलाह राम नाम रंग रखिया।

ऐब तन चुकड़ो ए मन मिलद को कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाखिया बोले क्यों बूझे जाने बुझाई। आखन सुनना पौन की बाणी ए मन रत्ता माया। खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक त्याया। ती कर रखे पन कर साची नाव शैतान मत कट जाए। नानक आखे

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंझ न्यानो आपे वे खै सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई परवान।

कर पंजवा। अचल चलाई मैं चले मैं काओ कटारा कर सके, जो साहिब राखे क्यों रहे इस लोभी का जियो टल पले। बिन तेल दीवा क्यों जले रहाओ, पोची पुराण कमाई है पौ वट्टी इत तन पाई है, सच बूझन आन जला।

मान अंतर हर रस रव रहा चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रकाशिया लागा सहज त्यान मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगे मान सतगुरु सेवन अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार के हर राख्या उधार हों तिन के बलिहार ने जिना नामे लगा प्यार सेई सुखिए चहु जुगी जिना नाम अखुट अपार गुर मिले नाम पाई है चूके मुह प्यास हर सेती मन रव रहा कर ही मन उदास।

सेवा पवै सब खाए, पारस परसे पारस होए, ज्योति ज्योत समाए, जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें।

अंगिन पवित्र रतिया मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंब का बिनस जाए दुख रोए जिस अंदर नाम प्रगास है ओ सदा सदा फिर होए ए जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम न चेतै लिवलाए पग छुए रहना नहीं आगे ठौर न पाए ओ वेला हथ न आवई अंत गया पछताए जिस नदर करे सो उबरे हर सेती लिवलाए देखा देखी सब करे मन मुख बूझ न पाए जिन गुरुमुख हृदय शुद्ध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावे।

आईरे गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा त्याए मल हों में कदे तोए रहा। मनमुख नाम न जाननी जिन नामे पत जाए, शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए। विष्टा के कीड़े पवे विच विष्टा, से विष्टा माहि समाए। तिनका जन्म सफल है जो चलने सतगुरु भाए, कुल उधारे अपना तन जन दी माए। हर हर नाम ते आई है जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्नी गुरमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए। ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा, हर पगता हर तन रास है गुर पूछ करे व्यापार। हर नाम सलाहन सला सदा वखर हर नाम आधार। गुरपुरे हर नाम दृढ़ आया, हर पगता अतुट पंडा।

आए रहा हर भगत हर का प्यार है जे गुरमुख करे विचार ता संड भगत न हो वही दुबदा बोल खुआर सो जन रलाया ना रले जिस अंतर विवेक विचार सो सेवक हर आखी है।

जाए। अंदिन नाम तियाये सहजे नाम समाये। अंदर रचे हर सच स्यो रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए। गुर सरनाई सुख लहे अंदिन नाम तियाए रहाओ। साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याए। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हों मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे हुए खुआर। तातुर बाजी पलस रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम प्यार। गुरमुख सदा त्याय एक।

नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग। श्री राग महला तीजा कर ही सौदा पाई है

अरे गुरमुखर नाम से आए, नाम निधान सद मन वसे, महली पावे थाओ रहाओ, मन मुख मंतन अंध है, तिसनो ठोर न ठाओ, बहु जोनी पौंदा फिरे, ज्यों सुन्ये कर काओ, गुरमति कट

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

भाई लाहा हर हर नाम मिले सहजे नाम समाए बिन गुरु महल ना पाईए नाम ना प्राप्त होए ऐसा सतगुरु लोड़ लहो जिद्दू पाईए सच सोए असुर संगारे सुख वसे जो तिस पावे सो होए जेहा सतगुर कर जानिया ते हो जेहा सुख होए एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए नानक एक

अपना धर्म गवावे बूझे नाही अंधन दुख विहानी मन मुख अंध न चेत ही डूब मोए बिन पानी मन रे सदा पजो हर सरनाई गुर का शब्द अंतर वसे ता हर विसर न जाई रहाओ इहो शरीर माया का पुतला विच हो मैं दुष्टि पाई आवन जाना जम्मन मरना मन मुख पत गवाई सतगुर सेव सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मिलाई सतगुर की सेवा अत सुखाली जो इच्छे सो फल पाए जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए सदा आनंद रहे दिन राती मिल प्रीतम सुख पाए जो सतगुर की शरणागति हौं तिन कै बल।

पाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द फिर ना पाई है बिरथा जन्म गवाए।

देख कुटंब मोह लुबाना चलदियां नाल न जाई। सतगुर सेव गुण निदान पाया तिस दी कीम न पाई। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा अंते होए सखाई। अपने मन चित कहे कहाए बिन गुर आप न जाई। हर जियो दाता भगत वचल है कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वड़ियाई। श्री राग महला तीजा। तन जननी जिन जाया तन पिता प्रधान। सतगुर सेव सुख पाया विचों गया गुमान। दर सेवन संत जन खड़े पाइन गुणी निदान। मेरे मन गुरमुख त्याए हर सोए गुर का शब्द मन वसे। मन तन निर्मल होए रहाओ कर कृपा कर आया आपे मिलिया आए। गुर शब्दी सालाही है रंगे सह सुवाए। सच्चे सच समाया मिल रहे न विछड़ जाए। जो किस करना सो कर रहा अवर न करना जाए। चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए। आपे कार कराए सी अवर न करना जाए। मत तन रत्ता रंग स्यों होमे तज विकार। एनस हृदय रव रहे।

अंत ना पाया जाए, कतनी बदनी ना पाई है, हों मैं विच्चों जाए, सतगुर मिले है, सद पैर चै, आप बसे मन आए, पाई रे गुरमुख बूझे कोए, बिन बूझे कर्म कमावणे,

पूरे सबद समाए, आपे दे ता पाईए, होर करना किछु ना जाए, देवन वाले के हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम

काया सादे उर तप करे विच्चों हो में न जाए अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए गुर के शब्द जीवत मरे हर नाम वसे मन आए। सुन मन मेरे पाच सत गुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है बिख पवजल शब्द गुर तरना रहाओ त्रै गुण सभा तात है दूजा पाओ विकार पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा ने बूझे बिखिया प्यार सतगुर मिले तृप्ति छूटे चौथे पद मुक्त द्वार गुर ते मार्ग पाई।

पाये हर नामो दे दराए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए, मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाव चुकाए, अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए, रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार, हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार, मन निर्मल नाम से आई है ता पाए मोख द्वार, होमे विच जग बिन सदा मर जमे आवे जाए, मन मुख शब्द ना जाए।

विचार। सतगुर सेव मन निर्मला हौ मैं तज विकार, आप छोड़ जीवत मरे गुर के शब्द विचार। तंदा तावत रह गए लागा साच प्यार, सच रते मुख उजले तित साचे दरबार। सतगुर पुरख ना मन्यो शब्द ना लगो प्यार, इस्नान दान जेता करें दूजे पाए खुआर। हर जियो अपनी कृपा करें ता लागे नाम प्यार, नानक नाम समाल तू गुर कहे अपार। श्री राज महला तीजा। किस हो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए, सतगुर का पाना मन लई विच्चों आप गवाए। एहा सेवा चाकरी नाम वसै मन आए, नामे ही ते सुख पाइए।

न पछाण्यो सुपना गया विहाय सुन्ये कर का पाहुणा ज्यो आया त्यो जाए मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मो देसी जाए सब किच आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए सतगुर सेवन आपना हौ तिन कै लागो पाए नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ श्री राग महला तीजा जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला पगत

मन तन शीतल सास स्यों सास न बिरथा तोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए साची भगत तासी है जा हर वसै मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है सच नाम बीज पा।

अपना पाओ तिन पायोन, जिन गुरु का शब्द विचार, सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार, दुबदा मैल चुकायन हर राख्या उरदार, सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार, मन मेरे हो मैं मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार, रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया, प्रभ आपे लय मिलाए, अंदिन नामे रत्या ज्योति ज्योत समाए, ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सतगुरु बूझ न पाए, जिनको पूरब लिखिया सतगुरु पेटिया तिन आए, विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुआए।

सच्ची वाणी हर पाए हर स्यो रह समाए रहाओ। सच्ची भगति मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए गुरमुख एहो रंग पाए जिसनो कृपा करे रजाए। संसार एहो संसार है सुतिया रहन विहाए एक अपने पाने कड लयन आपे ले उन मिलाए। आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए। गुरमती हर पाए।

बैन ना मिले हदूर, मनमुख शब्द ना जाने, अवगुण सो प्रभ दूर, जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर, गुर शब्दी मन वेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर। आपे रंगन रंगियोन शब्दे लयोन मिलाए, सच्चा रंग ना उतरे जो सच रते लिवलाए, चारे कुंडा पाव थके मन मुख बूझ न पाए।

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

ना सुखे सुख विहाय। ज्ञान विहूनी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

गुरुमति नाम सलाही है, दूजा अवर न कोए रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मन तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाये, मन मुख फिरे दीवान। शब्द नाची ने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर ना कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जेसो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमा

गुर शरण आवे ता निर्मल होए, मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए, मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए। गुर प्रसादी मन वसे मल हो मैं जाए समाए, ज्यों अंधेरे दीपक बालिए त्यों गुर ज्ञान अज्ञान तजाए।

नानक नाम ना विसरै सच्चे माए समाओ। श्री राग महला चौथा कर पहला, मैं मन तन बिरहो अत अगला, क्यों प्रीतम मिले कर आए, जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे दुख जाए, जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मिलाए, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, हम मूरख मुगत शरणागति कर कृपा मेले हर सोए। रहाओ सतगुरु दाता हर नाम का प्रभ आप मिलावे सोए, सतगुरु हर प्रभ बुझिया गुरु जेवड अवर ना कोए, हों गुरु शरणाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए।

कूड़ कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास प्रभ, तुद्दो खाली को नहीं दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड ले जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरमुख सज्जन जे

ना हो जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए रहाओ। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लग्या कड़ रतन देवे प्रगास। तन वड़ पागिया जो आए मिले गुरु पास, जिना सतगुरु पुरख ना पेट्यो से पागहीन बस काल। ओए फिर जोन पवाईए विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस न पिटिए जिन अंसर को चंडाल। सतगुरु पुरख अमृत सर वड़ पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए। जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की लिवलाए। श्री राग महला चौथा, गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए। गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरे हीर मिल बेदिया रंग चलू लेनाए। मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपत मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए रहाओ। मन रंगो वड पागी हो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हों सतगुर के बल जाओ। बिन सतगुर हर नाम न लब्बे लख कोटी कर्म कमाओ, बिन पागा सतगुर नाम मिले कर बैठिया निकट नित पास। अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास, बिन सतगुर पेटे कंचन नासिए मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास। सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले विच बोहित बैठा आए। तन तन वड पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा, हों पंथ दसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे।

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभु पाना सोचिया तुर लिखिया ना मिटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलें समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवा ना बोलनी हौ मल मल तो वां तिन पाए पाई रे मिर सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुर पुरख है दुख कड्डे हौ मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पागहीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आगे ना निले ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आथवे रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचै पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वजदे दर सच्चे शोभा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवा।

सोसन तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया व्याप्या मन की मत तिन प्रभु आप पुलाया ना तिस जात ना पत सतगुर पुरख मिलाया इको सज्जन सोए हर जन का राखा एक है क्या मानस हो मैं रोए जो हर जन पावे सो करे दर फेर ना पावे कोए नानक रता रंग हर सब जग में चानन होए श्री राज महला पंजवा मन विलास बहु रंकना दृष्ट पूल खुशिया छत्रतार बादशाहिया विच सहते परिया पाई रे सुख साध संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख विदाते दुख सहसा मिट गया रहाओ जेते थां सनंतरा तेते पावे आया तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया हुक्म चलाए निसंग होए वरते अफरिया सबको वसगत कर लयोन बिन नावे खाक रलिया कोट तेती सेवका सिद्ध साधक दर खरिया गिरमबारी वड साहेबी सब नानक सुपंथिया श्री राग महला पंजवा पलके उठ पपोलिये बिन बुझे मुग्ध अजान सो प्रभ चित न आयो छुटेगी बेबान सतगुर से ती चित लाए सदा सदा रंगमान प्राणी तू आया लाहा लेन लगा कित कु पकड़े।

जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

सतगुर चरण गहे सफल मूरत सफला करी जिस सच्चे नाल प्यार दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार बां पकड़ गुर का।

जपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवरना कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

तिसमुख उजल होए, पूरे गुरते पाये प्रगट सबनी लोए, साध संगत कह कर वसै एको सच्चा सोए। मेरे मन हर हर नाम ते आए, नाम सहाय सदा संग, आगे ले छड़ाए रहाओ, दुनिया किया वडियाया।

उपाव स्याणप सगल छाड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रव्याप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो में ताप नानक को गुर पेटिया बिन से सगल संताप श्री राग महला पंजवा एक पछाणु जी का इको रखन हार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभु।

जिना सतगुर से चित लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम से आए।

काल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल, थान थान अंतर रव रया।

मेरे मन गुर सबदी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोए। रहाओ मन किया इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान। अंतरजामी सदा संग करने हार पछान। गुर प्रसादी मुख उज्जला, जप नाम दान स्नान। काम क्रोध लोभ बिनसिया, तजिया सब अभिमान। पाया लाहा लाभ नाम, पूरन होए काम। कर कृपा प्रभ मेलिया, दिया अपना नाम। आवन जाना रह गया, आप हुआ निर्वाण। सच महल कर पाया, गुर का शब्द पछान। भगत जना को राखदा अपनी कृपा तार। हलत पलत मुख उजने।

हो वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा।

हर जपिए आ राजिए आठ पहर गोविंद। जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवां। प्रीत लगी तिस सच स्यों मरे ना आवे जाए। ना वे छोड़िया विछड़े सब मैं रहा समाए। दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत भाए। अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए। माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप।

मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्व कला कर था प्या अंतर जोत अपार सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर रख उधार मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो दुख ना

मनमुख पसना पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भक्ति नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार महा बिकट जम पाया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हरमया श्री राग महला पंजवा मेरा तन अर तन मेरा राज रूप मैं देश सुतदारा बनता अनेक बहुत रंग अरवेश हर नाम हृदय न वसई कारज किते न लेख मेरे मन हर हर नाम ते आए कर संगत नित साधकी गुरचरणी चित लाए रहाओ नाम निधान ते आई है मस्तक हो वै पाग कारज सब सवारियें।

अठसठ तीरथ नाओ जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ श्री राग महला पंजवा शरण पे प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल सतगुर के उपदेश।

करे दया प्रभ अपनी, एक निमख ना मनो विसार रहाओ। गुण गोविंद नित गावियए अवगुण कटन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार। सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार, तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर। लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर, थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर। सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान। नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप रहाओ। जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल, जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल। मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत। रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ। साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया।

मेरे मन हर पज सदा एक रंग काट काट अंतर रव रहा सदा सहाई संग रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओहो रस जाने जिंद संता संगत मन वसै प्रभ प्रीतम बख्शिंद जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान रसना उचरै गुणवती कोई न पुजै दान दृष्ट तार मन तन वसै दयाल पुरख मेहरवान जियो पिंड तन तिसदा हौ सदा सदा कुर्बान मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार पूला मार्ग पायुन।

रसना सच्चा सिमरिए मंतन निर्मल होए। मात पिता साथ अगले तिस बिन अवर न कोए। मेर करे जे आपनी चसा न विसरै सोए। मन मेरे साचा सेव जिचर सास, बिन सच्चे सब कूड़ है अंते होए विनाश। रहाओ साहेब मेरा निर्मला तिस बिन रह न जाए। मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर न जाए। तिस आगे अरदास कर जो मेले करतार, सतगुर दाता नाम का पूरा जिस भंडार। सदा सदा सालाही है अंत न पारावार। परवदगार सालाही है जिस दे चलत अनेक। सदा सदा आरा

संत जनो मिल पाइयो सच्चा नाम समाल तोसा बंदो जी का एथे ओथे नाल गुरपुरे ते पाईए अपनी नदर निहाल करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल मेरे मन गुर जेवड अवर ना कोए दूजा छाओ ना पोस जाए गुर मेले सच सोए रहाओ सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा सेवड पागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब में रहा समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा लय तराए कित मुख गुर सालाही है करण कारण समरथ से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अगखंड जिन गुर सेविया अपना जमदूत ना लागे डंड गुर नाल तुल ना लग गई खोज डिठा ब्रह्मंड नाम निदान सतगुर दिया सुख नानक मन में।

प्रभात। क्या तू रत्ता ग्रस्त स्यों सब फुला की बागात, मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए नानक नाम समा

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात। पेई अरणै सौ सेव तू सौ रणै सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सोहरै वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहागणी जिन सै नाल प्यार। श्री राग महला पंजवां कर छेवां।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरु बिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधार है, पाप सगले जाहे, हौं तिनके बलिहारणे जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, से वडपागी नानका जिना मन एहो पाओ। श्री राग महला पंजवा। संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार। रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुर परम काटिया।

पार ब्रह्म पछाणा। श्री राग महला पंजवा कर पहला। संत जना मिल पाया कटेड़ा जमकाल, सच्चा साहिब मन मुठा हुआ खसम दयाल, पूरा सतगुर पेटिया बिनस्या सब जंजाल। मेरे सतगुरा हों तुद विट्टों कुर्बान, तेरे दर्शन को बलिहारण।

इच्छा छुटी है जिन अंदर नाम निदान गुरजेवर दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान आए से प्रवान है जिन गुर मिलिया सुवाय सच्चे से तीरतिया दरगह बैसन जाए करते हथ वडियाइया पूरब लिखिया पाए सच करता सच करनहार सच साहिब सच टेक सच्चो सच वखाणिए सच्चो बुद्ध विवेक सर्व निरंतर रव रहा जप नानक जीवे एक श्री राग महला पंजवा गुर परमेश्वर पूजिए संतन लाए प्यार सतगुरु दाता जी का सबसे दे आधार सतगुरु बचन कमावणे सच्चा एहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब चार मेरे साजन हर हर नाम समाल साधु संगत मन वसे पूरन होवे काल रहाओ गुर समरथ अपार गुर वड़ पागी दर्शन होए गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड अवर न कोए गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास पूरब लिखे पावणे साच नाम दे रास सतगुर सरणी आया बहुड़ नाही विनाश हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा साथ श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो छूटन सा चैन आए गुर के चरण सरेवणे तीरथ हर का नाम आगे दरगह

रहाओ। सतगुर विटो वारिया जिन दिता सचनाओ, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुर जेवड़ अवर ना दिसई आठ पहर तिस जाप, नदर करे ता पाईए सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया सेई नाम ते आए, नानक गुर शरणागति मरे ना आवे जाए।

अष्टपदियां आख आख मन वावना ज्यों ज्यों जा पैवाए जिसनो वाय सुनाई है सो केवड कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आख रहे लिवलाए।

जिथे वसे मेरा पासा हो सो केवड़ है थाओ। अंबड़ कोई ना सकई हो किसको पुछन जाओ, वरना वरन ना पावनी जे किसे वड्डा करे, वड्डे हाथ वड्डे आईया जय पावे तै दे। हुक्म सवारे आपने चसाना तिल करे, सबको आखे बहुत बहुत लैने कै विचार, केवड़ दाता आखी।

पाखंड प्रेम ना पाईए, खोटा पाज खुआर हर जियो त्यों फिर रावे नार। तुद पावन सुहागणी अपनी कृपा लह सवार। रहाओ गुर शब्दी सिगारिया तन मन फिर कै पास, दोए कर जोड़ खड़ी तकै।

माने ना हो, साची प्रीत ना तुटई, साचे मेल मिलाओ। शब्द रति मन वेदिया हो, सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई, जे सतगुरु माए समाए। फिर रिसालू नौ तनो, साचो मरे न जाए। नित रवे सुहागणी, साची नजर रजाए। साच तड़ी तन मांडिये, कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चीत वसाया, मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासया, राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहणी, मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावणी, साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख न जाने, साचे गुर कै हेत प्यार। निस अंधियारी सुतिए, क्यों फिर बिन रैन विहाय। अंक जलो तन जालियो, मन तन जल बल जाए। जा तन कं

को पूछो जाए, सतगुर मेली पैवसी नानक प्रेम सखाए। श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथे, आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू, आपे मोल अपार, साचो मन महत तू, आपे देवनहार, हर जियो तू करता करतार, ज्यों पावे त्यों राख तू, हर नाम मिले आचार, रहाओ आपे हीरा निर्मला, आपे रंग मजीठ, आपे मोती उजलो, आपे भगत बसीठ, गुर कै शब्द सलाहना, कट कट डीठ अडीठ, आपे सागर बोहे था, आपे पार अपार, साची वाट सुजान तू।

सब जग बांधो काल को बिन गुर काल अफार सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार हौ तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार सीचाने ज्यो पंखिया जाली बद्दक हाथ गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ।

पूरे ज्यों जल सोरे मछली करण पलाव करे फिर पावे सुख पाईए जा आपे नदर करे फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल काम काम ना आवई खोटी अवगणियार ना सुख पेई है सौरे झूठ जली बेकार आवण।

प्रभ सोए, नानक शब्द मिलावड़ा नावे छोड़ा होए। श्री राग महला पहला। जप तप संजम साधिए तीरथ की चैवास, पुन दान चंगियाइया बिन साचे क्या तास। जेहारा दे तेहा लुणे बिन गुण जन्म विनाश, मुंदे गुणदासी सुख होए। अवगण त्याग समाई है गुरमत पूरा सोए। रहाओ विन राशि वापारिया तके कुंडाचार, मूल न बुझे अपना वस्त रही कार बार। विन वखर दुख अगला कूड़ मुठी कूड़ियार, लाहा एनस नौतना परखे रतन विचार। वस्त लह कर अपने चले कारज सार, वन जारिया स्यो वनज कर गुरमुख ब्रह्म विचार। संता संगत पाई है जे मेले मेलनहार, मिलिया होए ना विछुड़े जिस अंतर जोत अपार।

त्रिभवन सो प्रभ जानिए साचो साचे नाए। सातन खरी सुहावनी जिन पिर जाता संग, मैली मैल बुलाये सो पिर रावे रंग। सच सुहागन सापली पिर मोही गुण संग, पूली पूली थल चढ़ा थल चढ़ डूगर जाओ। बन में पूली जे फिरा बिन गुर बूझ न।

कर ठाक न होए, नानक एक और अवर रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानिए निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर, पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए, रहाओ हर का मंदर सोहना किया करने हार, रव सस दीप अनूप जोत त्रिभुवन जोत अपार, हाट पटन गढ़ कोठड़ी सच सौदा वापार, ज्ञान अंजन पै पंजना देख निरंजन पाए, गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए, कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए, सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए सबद पेद सुख होए, वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास, सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए, भगती पाए विहूनिया मोह काला पथ खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हों मैं तृष्णा जाए, नानक निर्मल उजले जो राते हरनाए। श्री राग महला पहला, सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग, दुख कणों दोहागणी क्यों थिर रहे सुहाग।

गुरुमत पद सावा तिस तिसके संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवो बिन नावे मर जाओ, मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंदुला चेले ना ही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ, आए गया पछतावना ज्यो सुन्ये करकाओ। बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत, तब लग महल न पाइए जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाइए निर्बाणी पगनीत। हों गुर पूछो अपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ, सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ। शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार, नाम सलाहन सद सदा हर राखें उर्धार, सो क्यों मनो विसारिये सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार, बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढ़ो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनी है कहे सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोय। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिये जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार, दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार। मन रे राम जपो सुख होए, बिन गुर प्रेम ना पाइए शब्द मिले रंग होए, हाओ गुर सेवा सुख पाइए हर वार सह सिगार। सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हे प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया कीमत कह न जाए, हर वार कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार, संत सवा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए, शब्द पछाने रव रहे ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, वापारी बन जा रहा आए वजो लिखाए, कार कमावे सच की लाहा मिले रजाए, पूंजी साची गुर मिले ना तिस चिल ना तमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तराजी तोल, आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल, आप तुलाए तोल सी पूरे पूरा तोल। कथने कह न छुटिए ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच न पाइए बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार। श्री राग महला पहला। सतगुर पूरा जे

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरखरी आवला छाव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार सुखदाता दुख मेटनो सतगुर असुर संगार अवजल बिखम डरावनो ना कंदी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिस वंज मलार सतगुर पैका बोहे था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरे दुख लागे सुख जाए जेवा जलो जलावनी नाम ना जपै रसाए कट बिन सह दुख अगलो जम पकड़े पछताए मेरी मेरी कर गए तन तन कलत न साथ बिन नावे तन बाद है पूलो मार गया साचो साहिब से।

तुम जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे दिन प्यार, गुरुमुख अंतर रल रहा, बसे भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर, जैसी मछली नीर, ज्यो अधिको त्यों सुख कनो, मन तन शांत शरीर। दिन जल करी न जीवई, प्रभ जाने अब पीर। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर, जैसी चात्रिक मेह, सर पर थल हरियावले, एक बूंद ना पवे के हे। कर्म मिले सो पाई है, किस पया सिर गे हे। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर, जैसी जल दुध होए, आवतन आपे खवे, दुध को खपन न दे। आपे मेल विछुनिया, सच वजे आई दे। रे मन ऐसी हर्षो प्रीत कर, जैसी चकवी सूर, चिन पल नींद न सोवई, जाने दूर हजूर। मनमुख सो जी ना पवे, गुरमुख सदा हजूर। मनमुख गणत गणावनी, करता करे सोए, तासी कीमत ना पवे, जे लोचे सब कोए। गुरमत होए तपाई है, सच मिले सुख होए। सच्चा निहो ना तुतई, जे सतगुर पेते सोए। ज्ञान पदार्थ पाई।

हमें मैल न जाए। सोहम आप पछाणिए शब्द तेज पति आए, गुरुमुख आप पछाणिए अवर के करे कराए। मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पति आए, मन मुख सो जीना पवे विचर चोटा खाए। नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए। श्री राग महला पहला, मन मुख पुले पुलाइए पुली थौर न काए। गुरु दिन को ना दिखावे अंगी आवे जाए, ज्ञान पदार्थ खोया ठगिया मुठा जाए। बाबा माया परम पुलाए, परम पुली दोहागनी ना फिर अंक समाए। रहाओ पुली फिरे दिसंतरी, पुली द्रोह तज जाए। पुली डूंगर थल चढ़े पर मैं मन डोला।

जग सद्या लब लोभ अहंकार मोह ठगौली हौ मुई सावर कै संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए मैं तुझ बिन अवर न पावई तू पावे सुख होए रहाओ नाम सलाही रंग स्यों गुर के सबद संतोख जोगी से सोचल सी कूड़ा मोह न वेख वाट वटाणु आया नित चलदा साथ देख आखन आखे केतड़े गुर बिन बूझ न होए नाम वडाई जे मिले सत रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा करा न कोए गुर शरणाई छुटिए मन खोटी रास अष्ट तात पाप साकी करिए शब्द विदास आपे परखे पारखू पवे खजाने रास तेरी कीमत ना पवे शब्द की ठोक बजाए कहने हाथ न लबई सच चुके पत पाए गुरमत तू सालाना होर कीमत कहना जाए जित

जिन तन मन साज सुधारिया तिस प्रीति लिवलाए रहाओ। तन दे संतर होमिए इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंगन अगन जलाए। हर नामे तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए। तन है मंचल गालिए ती मन के रोग न जाए, हर नामे तुल न पुजई सब जिथी ठोक बजाए। कंचन के कोट बत करी।

गुरमुख मोख द्वार, सचो ओर है सबको ऊपर सच आचार। सबको ऊंचा आखिए नीच ना भूसे कोई, इतने पांडे साजे इक चानन के हो लोए। कर्म मिले सच पाइय थोर बख्श ना मेटे कोई, साध मिले साधु जने संतोख वसे गुर पाए। अकथ कथा विचारी है जो सतगुर माहि समाए, ई अमृत संतोखिया दर्द पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए, विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

राम नाम तन निर्मलो गुरदास करे प्रभ सोए रहाओ। राम नाम तन निर्मलो जे देवे देवनहार, आगे पूछ ना हो वही जिस बेली गुर करतार।

जो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास। पाई रे पाउजल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले।

गुरु राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक करिए सत नाम सिर सारा पाप चाहो मैं हर नाम ना

गुरुमुख कृपा करे भगत की जय, बिन गुरु भगत न होए। आपे आप मिलाए बूझे, ता निर्मल हो वह कोय। हर जियो सच्चा सच

आओ आपे हर जग जीवन दाता आपे बख्श मिलाए जी जंत एक आवे चारे क्या को आप सुनाए गुरमुख आपे देवड़ियाए आपे सेव कराए देख पुटंब मोह लुभाना चल दिया नाल न जाए सतगुरु सेव गुण निधान पाया।

जीवनदाता मन मुखपत गवाई, बिन सतगुरु को मग न जाने अंधे छौर न काई, हर सुखदाता मन नहीं वस्या अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करें दिन राती हों में मोह चुकाया, जिस क्यों राता तैसो हो गए सच्चे सच समाया। आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार, सतगुर सेवे सहज उपजे हों में तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उधार। प्रभु मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हों मैं दुख सब जाए, सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहारे जाऊं। अपने मन चित कहे तहाए दिन गुर आप ना जाए, हर जियो भगत वचन सुखदाता कर कृपा मन वसाई, नानक शोभा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वडियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाऊं दे जमदंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए गुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए। रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ सुपने सुख ना पावई, दुख में सवै समाए, जे हर हर की कै बहुत लोची है किरत नामे ते आ जाए, हर का पाना भगती मन्या से भगत पे दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा ले आना जाए, जे सो अमृत नीरी है पी दिख फल लागे ताए, से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल प्यार, सतगुरु का पाना

हर का नाम निधान है, जिस अंत ना पारावार, गुरुमुख से ही सो दे जिन कृपा करे करतार। नानक दाता एक है, दूजा और न कोए, गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, पंखी दीर्घ सुहावना, सच चुग गए गुरु।

अमृत फल पाए। गुरुमुख ब्रह्म हरियावला साचे सह सुवाए, साखा तीन निवारिया एक शब्द निर्लाए। अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मन मुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास न बैठी है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना।

सच समाओ। हुकम ना जाने बपुणे पूले सिरे गवार, मन हच कर्म कमाऊं दे नित नित होए कुआर। अंतर शांत न आवई ना सच लगे प्यार, गुरमुखिया मोह सोने गुर के हेत प्यार। सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार, आए से परवान है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाऊं दे नदरी बाहर न कोए, जैसी नगर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा, गुरुमुख नाम से आये मनमुख बूझ न पाए। गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए, सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए। पाई रे दासन दासा होए, गुर की सेवा गुर भगत है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए, सदा फिर नहीं चल पाए ना ओ मरे न जाए। शब्द मिली ना बिछड़े फिर के अंक समाए, हर निर्मल अप उजला बिन गुर पाया न जाए। पाठ पढ़े ना बुझई तेसी परम पुलाए, गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमति सह सुवाए,

सबके होमे मारिए माया का परम जाए नाम पदार्थ पाए गुरमुख सह सुभाए बिन गुर गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए भगत वसल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक सबदे हासा लाही है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला की जा माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए।

कार कमाए, सिर वडपा जी जिनी पाया सहज रहे समाए। माया विच सहज ना उपजे, माया दूजे भाए, मन मुख कर्म कमावने।

सबद अपार आपे बख्श मिलायन पूरे गुर करतार सहजे अदृष्ट पछाणिए निरपौ जोत निरंकार सबना जिया का इक दाता ज्योति ज्योत मिलावन हार पूरे सबद सलाहिए।

सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए। पूरे शब्द सब सोजी होई हर नामे रह समाए। मन मेरे सतगुर स्यों चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए। रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई ज्यो राखे त्यो रहना। गुर कै शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल तरना। वड्डे पाग नौ पाईए गुरमुख शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई। इतना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया। लक्ष्यो राशि फिर आवे दिखा जन्म गवाया। भगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते। अंगिन गुण गावे सब निर्मल सहजे नाम समाते। गुरुमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी। एक को सेवन एक आराधे गुरुमुख अकथ कहानी। सच्चा साहिब सेवी है गुरुमुख वसे मन आए।

रोए। सतगुरु जिनी ना सेवेओ सेवित आए संसार, जम दर्ब दे मारिए फूक न सुने पुकार। बिरखा जन्म गवाया मर जमे वारो वार। एहो जग जलता देख के पज पे सतगुर शरणा, सतगुर सच दिलाया सदा सच संजम रहना। सतगुर सच्चा है बोहिखा सब दे पवजन करना। लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त न होई, पर पंडित मोनी थके दूजे पाए पट खोई।

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही ज्ञाता काट ना सिन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिसमें ले सो पगता, सगल उकत उपावा त्याग शरण पावा, नानक गुरु।

नानक सतगुरु दिया बुझाए जियो। एहो जगत परम पुलाया, आपो तुद खुआया, पर पाप लगा दोहाजनी, पाग बिना के नाह जियो। दोहाजनी क्या निशानिया, खसमो कुथिया फिर निमानिया, मैले वे स्तिना कामनी, दुखी रहन विहाए जियो। सोहागनी क्या कर्म कमाया, पूर्व लिखिया फल पाया, नदर करे कह अपनी, आपे ले मिलाए जियो। हुक्म जिनानो मनाया, तिन अंतर शब्द वसा।

चुकाया। नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। सतगुर मिले ऐ फल पाया जिन विच्चों ऐ करन चुकाया। दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो। अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां।

तिस जेवड अवर न कोई दियो रहाओ गोसाई महिंदा इच्छड़ा अम अबे खावो मिचड़ा पैन पाई सब सजना तुझ जेहा नाही कोई दियो तेरे हुक्मे सामने आया मैं सबका हल जो आया नाव बीजन लगा आस्तर हर बोल बख्श जमाए जियो हौ गुर मिल इक पछाणदा दोया कागल चित न जानदा हर इक तै तारे लायो ने ज्यो पावे तिवे निभाए जियो तुसी पोजो पुंचो पाइयो गुर दीवान कवाए तैनाइयो हौ होआ माहर पिंड दा बन आंदे पंज शरीक जियो हौ आया सा मैं तिहंडिया पंज किरसान मुझे

ਲੱਗਾ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰ ਕਹਿ ਆਇਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया कल पीतर बाहुर जासी नागा जैसी कलम बुरी है मस्तक तैसी जीड़े पास कहो नानक प्राणी पहले पहरे हुकुम पया गरवास दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा विसर गया ध्यान हथो हथ नचाए वन जा रहा मित्रा ज्यो जसदा कर कान हथो हथ नचाए प्राणी माप कहे सुत मेरा चेत अचेत मूड मन मेरे अंत नहीं कछ तेरा जिन रच रचिया तिसे न जाने मन भीतर तर ज्ञान कहो नानक प्राणी दूजे पहरे विसर गया ध्यान तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा तन जोबन स्यो चित हर का नाम न चेत ही बन जा रहा मित्रा बद्दा छुटे जित हर का नाम न चेत प्राणी विकल पया संग माया तन स्यो रता जोबन मता अहला जन्म गवाया कर्म से की वापार ना की तो कर्म ना की तो मित

जा जम पकड़ चलाया वन जा रहा मित्रा किसे न मिलिया पेट पेट चेत हर किसे न मिलियो जा जम पकड़ चलाया झूठा रुदन हुआ दो आले खिन में पया पराया साई वक्त प्राप्त होई जिस

ज्ञान ध्यान गुण संयम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरथ वर्त सुच संयम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा। तीजे पैरे रैन कै बन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जो बन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जा जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिद पया तन खीन

मेरा मेरा कर पालिए वन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा जिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किछ।

जिन पेवकड़े नाम समालिया सब सफलो जन्म तिना दा गुरमुख जिना मन जिन पासा टालिया हर संत जना मिल कारज सोया वर पाया पुरख आनंदी हर सत सत मेरे बाबुला हर जन मिल जंज सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबुला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो हर शोभा देवो जित सवरे मेरा काजो हर हर पंक्ती काज सुहेला गुर सतगुर दान दिवाया खंड वर पंड हर शोभा होई इहो दान ना रलै रलाया और मनमुख दाज जे रख दिखा लें

ते आया। हर पुरुख ना कभी बिन सै जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर

मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम समाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले। संग सहाई हर नाम त्याई बिरथा कोई न जाए। मन सिंधे से ही फल पावे चरण कमल चितलाए। जल थल पूर रहा बनवारी कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे। मन प्यारिया जियो

आठ पहर प्रवजा पे आप जुगादी सेवक स्वामी पगता नाम आधारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लब्दे खेप सवली मन प्यारिया।

पुलकारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूरन कृपा प्रभ करी कर गहनी ने हर जसोदी ने जोन ना पावे नह मरी सतगुर दयाल कृपाल पेटत हरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन न जाए अकस स्वामी सदकै जाए ना।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोए जियो। हर जी सबे प्रतपालदा खट खट रमैया सोए। सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए। जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए। हर गुरसन आई पाई है मन जारिया मित्रा। वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ। विच हो मैं कर्म कमाऊं दे ज्यों वेसुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ। वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ। मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ। जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए। चल जिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए। हौ बलिहारी तिन तो जिन हर मन उठा आए। जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए। तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर पीत लगाए वड पागी गुर पाया। गुर सब्जी पार लगाए रहाओ। हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले। हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के। हौ बलिहारी तिन कौ जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है। मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई पज पो। जिंदु सब किलिख दुख पर हरे रहाओ। कट कट मैया मन वसे क्यों पाई है कित पत। गुर पूरा सतगुर पेटिए हर आए वसे मन चित। मैं तार नाम आधार है हर नाम में ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नाम में ही जत पत। जन नानक नाम से आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया। सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास। सेवक पाए बन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सांस गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिना रह रास रहाओ।

ले दूजे पाए दुख पाया सब जोही जमकाल नानक गुरमुख उबरे साचा नाम समाल महला पहला गली असी चंगिया आचारी बुरिया मनो कुशुद्धा कालिया बार चिटविया रीसा करह तिनाड़िया जो सेवे दर खलिया नाल खसमे रतिया माने सुख रलिया होंदे तान नितानिया रह निमानिया नानक जन्म सकार था जे तिनके संग मिला पौड़ी तू आपे जल मीना है आपे आपे ही आप जाल तू आपे जाल बताएदा आपे विच सेवाल तू आपे कमल अलिप्त है सह हत्था विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएदा एक निमक कड़ी कर ख्याल हर सुदों बार किच नहीं गुर सब्दी वेख निहाल श्लोक महला तीजा हुक्म ना जाने बहुता रोवे अंदर तोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर कर शोभा महल बुलाई नानक कर्मी ए मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मन मुख नाम विहूणिया रंग कुसुम्बा देख ना पुल इक्का रंग बिन खोड़िया सोचा इसदा मुल दूजे लगे पत मोए मूर्ख अंध गवार।

पौड़ी। शिष्ट उपाय सब तुझ आपे रिजक समाया, एक वल छल करके खाम दे मोह कूर कुसत तिन्नी ताया। तुद आपे पावे सो करें, तुद ओते कम कोय लाया। इकना सच बुझायन तिना अतुट भंडार देवाया। हर चेत खाहे तिना सफल है, अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित वेद बखाने, माया मोह सुआए। दूजे पाए हर नाम विसारिया, मन मूरख मिले सजाए। जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते, जो देंदा रिजक समाहे। जम का पाथा गलो न कटिए, फिर आवे जाए। मन मुख किछु न सूजे, अंगले पूरब लिखिया कमाए। पूरे पाग सतगुर मिले, सुखदाता नाम वसै मन आए। सुख माने सुख पहनना, सुखे सुख विहाए। नान सो ना मनो ना विसारिये, जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा। सतगुर सेव सुख पाया, सच नाम गुण तास। गुरमति आप पछाणिया, राम नाम परगास। सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास। जियो पिंड सब तिस्ता शिव करे अरदास। सच्चे सब सलाहना सुखे सुख निवास। जप तप संजम मने माहे, बिन नावे त्रिग जीवास। गुरमति नाव पाई है, मन मुख मोह विनाश। ज्यों पावे त्यों रास तू, नानक तेरा दास। पौड़ी। सब को तेरा तू सब सदा, तू सब ना रास। सब तू दे पासो मंग दे, नित कर अरदास। जिस तू दे तिस सब किछ, मिले इक ना दूर है पास। तुद बाजो थाओ को नाही, जिस पासो मंगी है मन वेखो को निर्जास। सब तुदे नो सलाह दे, दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा। पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा, माया मोह प्यार। अंतर ब्रह्म न ची नहीं, मन मूरख गावार। दूजे पाए जगत प्रबोध दा, न बुझे विचार। बिरथा जन्म गवाया, मर जम्मे वारो वार। महला तीजा। जिन्नी सतगुर सेविया, तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार। सदा सांत सुख मन वसे, चूके कूक पुकार। आपे नो आप खाए मन, निर्मल होवे गुर सबदी विचार। नानक शब्द रते से मुक्त है, हर जियो हेत प्यार। पौड़ी। हर की सेवा सफल है, गुरमुख पावे थाए। जिस हर पावे तिस गुर मिले, सो हर नाम ते आए। गुर सबदी हर पाए, हर पार लगाए। मन हट किन न पायो, पुछो वेदा जाए। नानक हर की सेवा सो करे, जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा। नानक सो तूरावरियाम, जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया। गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया। आप होवा सदा मुक्त, सब कुल निस्तारिया। सोहन सच द्वार नाम प्यारिया। मन मुख मरे अंकार मरण विगारिया। सबो वर्ते हुकुम क्या करें विचारिया। आपो दूजे लग खसम विसारिया। नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा। गुरपूरे हर नाम दिड़ाया, तिन विच्चों परम चुकाया। राम नाम हर कीरत गाई, कर चावन मद दिखाया। हों में मार एक लिव लागी, अंतर नाम बसाया। गुरमति जम जोहे न साके, साके नाम समाया। सब आपे आप वर्तै करता, जो पावे सो नाई लाया। जन नानक नाम ले ता जीवे, बिन नामे खिन मर जाया। पौड़ी। जो मिलिया हर दीवान स्यों, सो सबनी दीवानी मिलिया। जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू, उसके मोह जिथे सब पापी तरिया। उस अंतर नाम निदान है।

हर अमृत कथा श्रेष्ठ उत्तम गुरबचनी सहजे चाकी तह पया प्रगास मिटिया अंधियारा ज्यों सूरज रहन के राखी अदिश अगोचर अलख निरंजन सो देखिया गुरमुख आखी। श्लोक महला तीजा। सतगुर सेवे अपना सो सिर ले कहलाए विचों आप गवाए कह रहन सच लिवलाए सतगुर जिनी ना सेवियो तिना बिरथा जन्म गवाए नानक जो तिस पावे सो करे कहना किछु न जाए। महला तीजा। मन वेकारी वेड़िया वेकारा कर्म कमाए दूजे पाए अज्ञानी पूज दे दरगे मिले सजाए आत्म दियो पूजिए बिन सतगुरु बूझ न पाए जप तप संजम पाना सतगुरु का करमी पल्ले पाए नानक सेवा सुरत कमावनी जो हर पावे सो थाए पाए। पौड़ी। हर हर नाम जपो मन मेरे जित सदा सुख होवे दिन राती हर हर नाम जपो मन मेरे जित सिमरत सब किलविक पाप लहाती हर हर नाम जपो मन मेरे जित दालद दुख कुख सब ले जाती हर हर नाम जपो मन मेरे मुख गुरमुख प्रीत लगाती जित मुख पाग लिखिया तुर साचे हर सित मुख नाम जपाती। श्लोक महला तीजा। सतगुर जिनी ना सेवियो शब्द ना कीतो विचार अंतर ज्ञान ना आयो मृतक है संसार लख चौरासी फेर पया मर जमे होए खुआर सतगुर की सेवा सो करे जिसनो आप कराए सोए सतगुर विच नाम निदान है कर्म प्राप्त होए सच रखे गुर शब्द स्यों तिन सच्ची सदा लिव होए नानक जिसनो

सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छड़ाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराध सबना ते वड्डा सब नाम अग्गे आन निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे कुरूप कुलखणी मन फोटे कूड़ियार तिरके पाने ना चले हुक्म करे गावार। गुर के पाने जो चले सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकी है जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार। बिन नामे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला

इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर, देखत ही जमराव हसे, ऐसा तैं जग परम लाया, कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना, जा तिस पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विचों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हुकम पछाण ता खसमे मिलना, रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी, जरा मरण पौ विसर गया, कुटंब देख बिगसे कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना, तिन आगलड़े में रह न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीतला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनेक अनेक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया, बिखम कोर पंख चालना प्राणी, रव सत तहना परवे संग, माया मो तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ, तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन ना जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण, ए जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाई, सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाई, राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया, तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया, एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा, ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता और

मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की पहरियां कह कर।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मित मेद अमृत दिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अफसर ना पछाणया उनमत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणया सुत संपत देख एव मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन समय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे थाका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुख।

अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा, जो पे हम ना पाप करंता, अहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुंता। रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर।

हर हर नाम में हर मन भाया, वडपागी हर नाम ते आया, गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले, गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया, हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई, हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना, कोई सज्जन संत मिले वडपागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला, मेरा मात पिता गुरु सतगुरु पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो। मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे, हर हर दया करो।

चौथा हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए हर हर नाम कथा नित सुनिए मिल सत्संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर करिए जियो आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिए जियो मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने हाँ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे मैं हर हर नाम उधरिए जियो हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिए जियो माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पी जय जियो मिल सत्संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन भाणी हर हर अमृत हर मन पावे मिल सतगुर अमृत पी जय जियो वड पागी हर संगत पावे पागहीन प्रम चोटा खावे बिन पागा सत्संग न लब्बे बिन संगत मैल परी जय जियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन पी जय जियो माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौदा जियो आवो संत मैं गल में लाइए मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए हर के संत मिलो मन देवा जो गुरबाणी मुख चौदा जियो वड पागी हर संत मिलाया गुरपूरे हर रस मुख पाया पागहीन सतगुर नहीं पाया मन मुख गर्व जूनी नित पौदा जियो आप दयाल दया प्रवतारी मल हो मैं बिख्या सब निवारी नानक हट पट्टन विच काया हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो माज महला चौथा हाँ गुण गोविंद हर नाम ते आई मिल संगत मन नाम वसाई हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी मिल सतगुर हर रस की चै जियो तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता।

वारिया जो मेरा प्रीतम दसे तिसके हो वारिया मिल सत्संगत लद्दा हर सज्जन हो सतगुरु विट्टो कुमाइया जियो जै जै देखा तै तै स्वामी तू कट कट रविया अंतर जामी गुरपूरे हर नाल दिखा लिया हो सतगुरु विट्टो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब इका जोत वरते पिन पिन ना रलई किसे दीर लाइया गुर प्रसादी एक नदरी आया हो सतगुरु विट्टो बताया जियो जन नानक बोले अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पानी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचे गुर दर्शन ताई बिल्प करे चात्रिक की न्याई त्रिखा ना उतरे सांस ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो सह तुन बाणी चिर होआ देखे सारंग पानी तन सो देश जहां तू वस्या मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो हों कोली हों कोल कुमाई गुर सज्जन मीत मुरारे जियो रहाओ इक करी ना मिलते ता कल युग होता हुण कद मिली है प्रिय तुद भगवंता मोहे रैन ना बिहावे नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई तिस सच्चे गुर दरबारे जियो रहाओ पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अविनाशी कर में पाया सेव करी पल चसा ना बिछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों कोली जियो कोल कुमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ राग माज महला पंजवा सारुत सुहावी जित तुद समाली सो कम सुहेला जो तेरी काली सो रिदा सुहेला जित रिदे तू उठा सबना के दातारा जियो तू सांझा साहिब बाप हमारा नौ निध तेरे अखुट पंडारा जिस तू दे सो त्रिपत अघावे सोई भगत तुम्हारा जियो सबको आसे तेरी बैठा कट कट अंतर तू है उठा सबे सांझी वाल सदाइन तू किसे न दिसे बहरा जियो तू आपे गुरमुख मुक्त कराए तू आपे मनमुख जन्म पवाए नानक दास तेरे बलिहारे सब तेरा खेल दसहरा जियो माज महला पंजवा अनहद बाजे सहज सुहेला शब्द आनंद करे सद केला सहज गुफा में ता

दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहुविध तावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ।

पूरा जियो। रेन संतन की मेरे मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद अपागी, सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे कूरा जियो। माज महला पंजवा। विसरना ही एवड़ दाते, कर कृपा भगतन संग राते, दिन सरैन ज्यो तुद त्याई, एहो दान मोहे करना जियो। माटी अंधी सुरत समाई, सब किश दिया पलिया जाई, अनद बिनोद चोज तमासे, तुद पावे सो होना जियो। जिस दा दिता सब किश लेना, शक्ति अमृत भोजन खाना, सेज सुखाली शीतल पवना, सहज केल रंग करना जियो। सा बुद्ध दीजे जित विसरे नाही, सा मत दीजे जित तुद त्याई, सास सास तेरे गुण गावा, ओट नानक गुर चरणा जियो। माज महला पंजवा। सिफत सलाहन तेरा हुकम रजाई, सो ज्ञान त्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावे, पाणे पूर ज्ञाना जियो। अमृत नाम तेरा सोई गावे, जो साहिब तेरे मन पावे, तू संतन का संत तुम्हारे, संत साहिब मन माना जियो। तू संतन की करे प्रतपाला, संत खेले तुम संग गोपाला, अपने संत तुद खरे प्यारे, तू संतन के प्राणा जियो। उन संतन के मेरा मन कुर्बाने, जिन तू जाता जो तुद मन पाने, तिनके संग सदा सुख पाया, हर रस नानक तृप्त अघाना जियो। माज महला पंजवा। तू जल निद हम मीन तुम्हारे, तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखारे, तुमरी आस प्यासा तुमरी, तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यो बारिक पी खीर अगावे, ज्यो निर्धन तन देख सुख पावे, त्रिखावंत जल पीवत ठंडा, त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यो अंधियारे दीपक परगासा, परता चितवत पूरन आसा, मिल प्रीतम ज्यो होत आनंदा, त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया, साध कृपाल हर संग गिजाया, हर हमरा हम हर के दासे, नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवा। अमृत नाम सदा निर्मलिया, सुखदाई दुख बिडारन हरिया, अवर साध चट अगले देखे, मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवे सो तृप्तावे, अमर होवे जो नाम रस पावे, नाम निधान तिसे प्राप्त, जिस शब्द गुरु मन बुठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त अघाना, जिन हर साध पाया सो नाए डुलाना, तिसे प्राप्त हर हर नामा, जिस मत पागी था जियो। हर इकत हाथ आया वरसाने बहु तेरे, तिस लग मुक्त पय कनेरे, नाम निधाना गुरुमुख पाई है, कहो नानक बिरली डीठा जियो। माज महला पंजवा। निद सिद रिद हर हर हर मेरे, जन्म पदार्थ गैर गंभीर है, लाख कोट खुशियां रंग रावे, जो गुर लागा पाई जियो। दर्शन पेखत पय पुनीता, सगल उधारे पाई मीता, अगम अगोचर स्वामी अपना, गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जा को खोजे सर्व उपाए, वड पागी दर्शन को विरला पाए, ऊंच अपार अगोचर थाना, ओ महल गुरु देखाई जियो। गैर गंभीर अमृत नाम तेरा, मुक्त पया जिस हृदय वसेरा, गुर बंधन तिनके सगले काटे, जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा। प्रभ कृपा ते हर हर प्यावो, प्रभु दया ते मंगल गावो, उठक बैठक सोवत जागत, हर त्याय सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया,
किलबिख काटे निर्मल छिया, आनंद पया निकसी सब पीरा, सगल बिना से दर्दा जियो, जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसारा, हत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरदा जियो, जब ते साधु संगत पाए, गुर पेट तो हो गई बलाए, सास सास हर गावे नानक, सतगुरु टाक लिया मेरा पड़दा जियो, माज महला पंजवा, ओत पोत सेवक संगराता, प्रप्रत पाले सेवक सुखदाता, पानी पखा पीसो सेवक कै ठाकुर ही का आहार जियो, काट सिलक प्रभ सेवा लाया, हुकम साहिब का सेवक मन पाया, सोई कमावे जो साहिब पावे, सेवक अंतर बाहर माहर जियो, तू दाना ठाकुर सब विद जाने, ठाकुर के सेवक हर रंग माने, जो किछ ठाकुर का सो सेवक का, सेवक ठाकुर ही संग जाहर जियो, अपने ठाकुर जो पहराया, बहुर न लेखा पुछ बुलाया, तिस सेवक के नानक कुर्बानी, सो गहर गंभीरा गहर जियो, माज महला पंजवा, सब किछ कर में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही, गुर प्रसादी जिन अंतर पाया, सो अंतर बार सुहेला जियो, चिम चिम वरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा, अनद विनोद करे दिन राती, सदा सदा हर के ला जियो, जन्म जन्म का बिछड़िया मिलिया, साध कृपा ते सूका हरिया, सुमत पाए नाम ते आए, गुरमुख होए मेला जियो, जल तरंग ज्यो जले समाया, त्यों ज्योति संग ज्योत मिलाया, कहो नानक प्रम कटे किवाड़ा, बहुड़ न होई है जौला जियो, माज महला पंजवा, तिस कुर्बानी जिन तू सुनिया, तिस बलिहारी जिन रसना पणिया, वार वार जाई तिस विटों, जो मन तन तुद आरा दे जियो, तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले, नैन निहाली तिस पुरख दयाले, मन देवा तिस अपने साजन, जिन गुर मिल सो प्रबला दे जियो, सेवड पागी जिन तुम जाने, सबके मदे अलिपत निर्बाणे, साध के संग उन पौजल तरिया, सगल दूत उन सा दे जियो, तिनकी शरण परया मन मेरा, मान पान तज मोह अंधेरा, नाम दान दीजे नानक को, तिस प्रभ अगम अगा दे जियो, माज महला पंजवा, तू पेड़ साख तेरी फूली, तू सूखम होआ अस्थूली, तू जल निद तू फेन बुदबुदा, तुद बिन अवर न पालिए जियो, तू सूत मणिये भी तू है, तू गंठी मेर सिर तू है, आद मद अंत प्रभ कोई, अवर न कोई दिखा लिए जियो, तू निर्गुण सरगुण सुखदाता, तू निर्माण रसिया रंग राता, अपने कर सब आपे जाने, आपे तुद संभालिए जियो, तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे, नानक दास सदा गुण गावे, एक पोरी नदर निहालिए जियो, माज महला पंजवा, सफल सोबाणी जित नाम वखाणी, गुर प्रसाद किने विरले जानी, तन सोवेला जित हर गावत सुनना, आए ते परवाना जियो, से नेत्र प्रवान जिनी दर्शन पेखा, से कर पले जिनी हर जस लेखा, से चरण सुहावे जो हर मार्ग चले, हौ बल तिन संग पछाणा जियो, सुन साजन मेरे मीत प्यारे, साध संग खिन माहे उदारे, किलविक काठ हुआ मन निर्मल, मिट गए आवन जाना जियो, दो कर जोड़ एक बिनो करी जाए, कर कृपा दुबदा पत्थर लीजे, नानक कहो प्रभ भय कृपाला, प्रभ नानक मन पाना जियो, माज महला पंजवा, अमृत बाणी हर हर तेरी,
सुन सुन होवे परम गत मेरी, जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुरु का दर्शन पाए जियो, सुख पया दुख दूर पराना, संत रसन हर नाम वखाना, जल थल नीर परे सर सुबर, बिरसा कोई न जाए जियो, दया तारी तिन सिरजन हारे, जीनी जंत सगले प्रत पारे, मेहरवान कृपाल दयाला, सगले तृप्त अघाए जियो, वन त्रिण त्रिभवन की तोन हरिया, करण हार खिन पीतर करिया, गुरुमुख नानक तिसै अरादे, मन की आस पुजाए जियो, माज महला पंजवा, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदक तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तांबो के आकारा जियो, तुमरी कृपा ते तुद पछाना, तू मेरी ओत तू है मेरा माना, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाना तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो, नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीत लाया, गुरु

भगत जीवें गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याय त्याय सुख पाया जियो, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे, पेटत गुरदर्शाया जियो, अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधिक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पोलावा, गुरमन ही मैं प्रगटाया जियो, आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी।

तू प्रीतम ठाकुर अचपारी, तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे, पेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो, ए मत गुर प्रसाद मन पारो, तुमरी कृपा ते हुए परगाता, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई।

जल थल मैयल दैद स्वर साया सांत पल बुझी सब कृष्णा आनंद पया सब थाई जियो सुखदाता दुख पंजन हारा आते बख्श करे जी सारा अपने कीते नो आप प्रतपाले तै पैरी तिसे मनाई जियो जाकी शरण पया गत पाये साथ साथ हर नाम ते आये तिस बिन होर न दूजा ठाकुर सब तिसे किया जाई जियो तेरा मान तान प्रभ तेरा तू सच्चा साहिब गुणी गहेरा नानक दास कह बेनंती आठ पहर तुझ ते आई जियो माज महला पंजवा सबे सुख परे प्रभ तुठे गुरपूरे के चरण मन उठे सह समाज लगी लिव अंकर सो रस सोई जाने जियो अगम अगोचर साहिब मेरा कट कट अंतर वरते मेरा सदा अलिप्त जिया का दाता को विरला आप पछाने जियो प्रभ मिलने की ए निशानी मन इको सच्चा हुकुम पछाने सहज संतोष सदा तृप्ता से आनंद खसम कह पाने जियो हथी दिखी प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माने जियो माज महला पंजवा तीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार किया तिन करते है दुख का डेरा काया जियो मन तन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा खान न दिसे कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किस करे सो आपे आपे बुद्ध सियाणप किछु न जापे अपने संतानो आप सहाय प्रभ परम पुलावा लाया जियो चरण कमल जन का आधारो आप पैर राम नाम वपारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्व समाया जियो माज महला पंजवा सो सत मंदर जित सच चित आई है सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा तर्क सुहावी जित वसे हर जन सच्चे नाम वितो कुर्बानो जियो सत वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवे जन तेरे सत शब्द मन मानो जियो सत सालाहन बड़ पाजी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरे तुद पावे सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान संतर सच्चा सोई नानक सच त्याई।

मेला जप अमृत नाम संत संग मेला करी मूरत सिमरत पल वंजे जीवन सफल तिथाई जियो सिमरत नाम दोख सब लाथे अंतर बाहर हर प्रव साथे तै पाओ परम खोया गुरपुर देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वड ऊच अपारा नौ निज नाम परे पंडारा आद अंत मद प्रभ सोई दूजा लवे न लाई जियो कर कृपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचे सादर वाला देह दान नानक जन मांगे सदा सदा हर प्याई जियो माज महला पंजवा ऐसे तू है आगे आपे जी जंत्र सब तेरे थापे तुद बिन अवर न कोई करते मैं तर ओत तुम्हारी जियो रसना जप जप जीवे स्वामी पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी जिन सेविया तिन ही सुख पाया सो जन्म न जुए हारी जियो नाम अवखद जिन जन तेरे पाया जन्म जन्म का रोग गवाया हर कीर्तन गावो दिन राती सफल एहा है कारी जियो दृष्ट तार अपना दास सवारिया कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया इकत बिन होर दूजा नाही बाबा नानक एह मत सारी जियो माज महला पंजवा मन तन दत्ता राम प्यारे सर्व सु दीजे अपना वारे आठ पैर गोविंद गुण गाये बिसरना कोई सासा जियो सोई साजन मीत प्यारा राम नाम साध संग बिचारा साधु संग तरी जय सागर कटिये जम की फासा जियो चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल दुख गुर काटे पूरन होई आसा जियो

सारा आप एकांति आप सारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन डिठे लैन विजोगा जियो अंचल लाए सब सिस्त्राई अपना नाव आप जपाई गुरबो हित पाया कृपा ते नानक तुर संजोगा जियो माज महला पंजवा सोई करना जे आप कराए जिथे रखे सा पली जाए सोई सियाना सो पतवंता हुक्म लगे जिस लीठा जियो सब परोई इकत तागे जिस लाए ले सो चरणी लागे ऊंड कवल जिस होए पर

ये सब उतरे तलमल नानक नाम त्याय त्याय जीवे दिन श्या परम को तीथा जियो। माज महला पंजवा चूठा मंगन जे कोई मांगे तिसको मरते करी ना लागे पार ब्रह्म जो सद ही सेवे सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अनदिन नित जागी बाह पकड़ तिस स्वामी मेले जिसके मस्तक लहना। चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की तूड़ नित बांछे नाम सच्चे का गहना। उठत बैठत हर हर गाये जिस सिमरत वर ने चल पाये नानक को प्रभु होए दयाला तेरा सीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सवाए सच्ची दरगे मैल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहिबा सच्चे मन पति आवणिया। हों वारी जियो वारी शब्द सुहावणिया अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमति मन वसावणिया। रहाओ ना को मेरा हों किस केरा साचा ठाकुर त्रिभुवन मेरा हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगुण पछोतावणिया। हुकम पछाणे सो हर गुण वखाणे गुर के शब्द नाम निशाणे सबना का दर लेखा सके छूटत नाम सुहावणिया। मन मुख फूला ठौर ना पाए जम दर बद्दा चोटा खाए बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवणिया। साकत कूड़े सच ना

सामणिया गुर सेवा ते सदा सुख पाया हो मैं मेरा ठाक रहाया गुर साखी मिटिया अंधियारा बजर कपाट खुलावणिया हो मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मंतन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया जीवन मरना सब तू दैताई जिस बख्शे किस दे वडियाई नानक नाम त्याए सदा तू जम्मन मरण सवारणिया माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख हो वह तोई बूझे गुण कह गुणी समावणिया हों वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया जो सच लागे से अंदन जागे दर्श कै शोभा पावणिया रहाओ आप सुने ते आपे वेखे जिसनो नदर करे सोई जन लेखे आपे लाए ले सो लागे गुरमुख सच कमावणिया जिस आप पुलाए सो किथे हथ पाए पूरब लिखिया सो मेकना ना जाए जिन सतगुर मिलिया सेवड पागी पूरे कर्म मिलावणिया तेई अड़े तन अंगदिन सुती कंक विसारी अवगण मुती अंगदिन सदा फिरे बिल लांदी बिन फिर नींद न पावणिया तेई अड़े सुखदाता जाता हो मैं मार गुर शब्द पछाता सेज सुहावी सदा फिर रावे सत सिगार बनावणिया लख चौरासी जी उपाय जिसनो नजर करे तिस गुरु मिलाए किल बिख का सदा जन निर्मल दर सच्चे नाम सुहावणिया लेखा मांगे ता किन दिए सुख नाही फुन दूए तीए आपे बख्श ले प्रभ साचा आपे बख्श मिलावणिया आप करे तै आप कराए पूरे गुर के शब्द मिलाए नानक नाम मिले वडियाई आपे मेल मिलावणिया माज महला तीजा इको आप फिरे परछन्ना गुरमुख वेखा ता एहो मन पिन्ना तृष्णा तज सहज सुख पाया इको मन वसावणिया हों वारी जियो वारी इकस क्यों चित लावणिया गुरमति मन इकट कर आया सच्चे रंग रंगावणिया रहाओ एहो जग पूला तें आप पुलाया इक विसार दूजे लोभाया अन दिन सदा फिरे परम पूला बिन नावे दुख पावणिया जो रंग राते कर्म विदाते गुर सेवा ते जुग चारे जाते जिसनो आप दे वडियाई हर के नाम समावणिया माया मोह हर चेते नाही जमपुर बद्दा दुख सहाही अन्ना बोला किछ नदर ना आवे मन मुख पाप पचावणिया इक रंग राते जो तुद आप लिव लाए पाए भगत तेरे मन पाए सतगुर सेवन सदा सुख दाता सब इच्छा आप पुजावणिया हर जियो तेरी सदा शरणाई आपे बख्शे दे वडियाई जम काल तिस नेड़ ना आवे जो हर हर नाम ते आवणिया अन दिन राते जो हर पाए मेरे प्रभ मेले मेल मिलाए सदा सदा सच्चे तेरी शरणाई तू आपे सच बुझावणिया जिन सच जाता से सच समाणे हर गुण गा

काल न चापे दुख ना संतापे ज्योति विच मिल जोत समाणी सुन मन सच समावने आ हौ वारी जियो वारी हर कै नाए शोभा पावने आ सतगुर सेव सच चित लाया गुरमती सहज समावने आ रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए दूजे लागी महल न पाए।

सच कमाए सतगुर सेवन से तनवंते ऐथे ओथे नाम समावणिया तै पाए सिंगार बनाए गुर प्रसादी महल कर पाए अन दिन सदा रवै दिन राती मजीथे रंग बनावणिया सबना पिरवसै सदा नाले गुर प्रसादी को नदर निहाले मेरा

ਆ ਮਾਇਆ ਮੋਏ ਇਹੋ ਜਗ ਸੁੱਤਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਅੰਤ ਵਿਗੁੱਤਾ ਜਿਸਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੋ ਜਾ ਗਾਏ ਗੁਰਮਤ ਸੋ ਜੀ ਪਾਵਣਿਆ ਅਪਿਓ ਪੀਏ ਸੋ ਪਰਮ ਗਵਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਕਤ ਗਤ ਪਾਏ ਭਗਤੀ ਰੱਖਾ ਸਦਾ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪ ਮਾਰ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਆਪ ਉਪਾਏ ਤੰਦੈ ਲਾਏ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਰਿਜਕ ਆਪ ਅਪੜਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਚ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਪਰਖ ਪਰਖਾਇਆ ਜਿਨ ਸਚ ਪੱਲੇ ਸਚ ਵਖਾਣੇ ਸਚ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਵਣਿਆ ਹੋ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਅੰਜਨ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਇਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਇਸ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋਈ ਪਾਏ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਸਚ ਦਿੜਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਚ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਚੋ ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਸੱਚੇ ਸਚ ਸਮਾਵਣਿਆ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਸਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟਣ ਹਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ ਪੈ ਪਾਏ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵਣਿਆ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਸੱਚੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਵੇ ਆਪੇ ਦੇ ਨਾ ਪੱਛੋ ਤਾਵੇ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਦੇ ਮਾਰ ਜੀਵਾਵਣਿਆ ਹਰ ਤੁਧ ਬਾਜੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਹਰ ਤੁਧੈ ਸੇਵੀ ਤੈ ਤੁਧ ਸਲਾਹੀ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਹਿੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਪਾਵਣਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਧੈ ਜਿਹਾ ਤੇਰੀ ਨਦਰੀ ਸੀਜਸ ਦੇਹਾ ਅੰਦਿਨ ਸਾਰ ਸਮਾਲ ਹਰ ਰਾਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ਤੁਧ ਜੇਵੜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜੀ ਆਪੇ ਗੋਈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕੜਪਨ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਕਟ ਆਪੇ ਭੋਗਣ ਹਾਰਾ ਅਲਖ ਵਰਤੈ ਅਗਮ ਅਪਾਰਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਈਐ ਸਹਿਜੇ ਸਚ ਸਮਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੂਜੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਜੈ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਪੰਚ ਦੂਤ ਮੋਹੈ ਸੰਸਾਰਾ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦੇ ਸੁਧ ਨਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਰਾਖੈ ਪੰਚ ਦੂਤ ਸ਼ਬਦ ਪਚਾਵਣਿਆ ਇਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵੇ ਅੰਦਿਨ ਮਾਤੇ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਹਰ ਦਰ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ ਏਕਮ ਏਕੈ ਆਪ ਉਪਾਇਆ ਦੁਬਦਾ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਵਿਦ ਮਾਇਆ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਉੱਚੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਮਾਵਣਿਆ ਸਭ ਹੈ ਸੱਚਾ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਵੇ ਜਿਨ ਸੱਚ ਜਾਤਾ ਸੋ ਸਹਿ ਸਮਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਸੇਵੈ ਸਾਚੇ ਜਾਏ ਸਮਾਵਣਿਆ ਸੱਚੇ ਬਾਜੋ ਕੋ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਆ ਦੂਜੇ ਲਾਗ ਜਗ ਖਪ ਖਪ ਮੂਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਏਕੋ ਜਾਣੇ ਏਕੋ ਸੇਵ ਸੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਪੇ ਤਰ ਦੇਖੈ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਅੰਗ ਦਿਨ ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਮੇਲੈ ਵੇਖੈ ਹਦੂਰ ਸਭ ਮੈਂ ਆਪ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋ ਜੀ ਪਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੀ ਮੀਠੀ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਰਲੈ ਕਿਨੈ ਚਖ ਦੀਖੀ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮਹਾਰਸ ਪੀਵੈ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਸਤਗੁਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਸਾਚਾ ਮਨ ਨਾਵੈ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਤੇਰਾ ਸੱਚੇ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੈ ਵਿਰਲੈ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਤੁਧ ਸਲਾਹ ਹੈ ਨਾ ਰਜਾ ਕਬਹੂ ਸੱਚੇ ਨਾਵੈ ਕੀ ਭੁਖ ਲਾਵਣਿਆ ਏਕੋ ਵੇਖਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਬੀਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਤਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾਵਣਿਆ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਪਲਰ ਤਿਆਗੈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਦਾ ਦੂਜੈ ਪਾਏ ਲਾਗੈ ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨ ਪਾਵਣਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ ਅੰਦਿਨ ਸਦਾ ਰਹੇ ਪੈ ਅੰਦਰ ਪੈ ਮਾਰ ਪਰਮ ਚੁਕਾਵਣਿਆ
परम चुकाया सदा सुख पाया गुरु प्रसाद परम पद पाया अंतर निर्मल निर्मल बाणी हर गुण सहजे गावणिया सिमरत शास्त्र वेद वखाणे परमे पूला तत न जाने बिन सतगुर सेवे सुख न पाए दुखो दुख कमावणिया आप करे किस आखे कोई आखन जाइए जे पूला होई नानक आपे करे कराए नामे नाम समावणिया माज महला तीजा आपे रंग हर रंग चढ़ाए मन तन रत्ता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावणिया हों वारी जियो वारी निरपौ मन वसावणिया गुर कृपा से हर निरपौ त्याया बिख पौजल सब तरावणिया रहाओ मन मुख मुग्ध करें चतुराई नाता तोता थाए ना पाई जेहा आया तेहा जाती कर अवगण पछोतावणिया मन मुख अंधे किछू न सूजे मरण लिखाए आए नहीं बूझे मन मुख कर्म करे नहीं पाए बिन नावे जन्म गवावणिया सत करनी शब्द है सार पूरे गुर पाईए मोख द्वार अंधन बाणी शब्द सुनाए सच राते रंग रंगावणिया रसना हर रस राती रंग लाए मन तन मोहया सह सुभाए सहजे प्रीतम प्यारा पाया सहजे सहज मिलावणिया जिस अंदर रंग सोई गुण गावे गुर के शब्द सहजे सुख समावे हों बलिहारी सदा तिन विटो गुर सेवा चित लावणिया सच्चा सच्चो सच पति जय गुर प्रसादी अंदर पी जय बैठ सुखान हर गुण गावे आपे कर सत मनावणिया जिसनो नजर करे सो पाए गुर प्रसादी हो मैं जाए नानक नाम वसे मन अंतर दर सच्चे सोभा पावणिया माज महला तीजा सतगुर सेवे वड्डी वड्याई हर जी अचिंत वसे मन आई हर जी ओ सफल्यो बिरख है अमृत जिन पीता तिस तिखा लहावणिया हों वारी जियो वारी सत संगत मेल मिलावणिया हर सत संगत आपे मेल है गुर सबदी हर गुण गावणिया रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया हर निर्मल हो मैं मैल गवाए दर सच्चे शोभा पावणिया बिन गुर नाम न पाया जाए सिद्ध साधक रहे बिन लाए बिन गुर सेवे सुख न होवी पूरे पाग गुर पावणिया एहो मन आरसी कोई गुरमुख वेखे मोर्चा ना लागे जाहो मैं सोखे अनहत बाणी निर्मल शब्द बजाए गुर शब्दी सच समावणिया बिन सतगुर क्यों ना देखिया जाए गुर कृपा कर आप जित्ता दिखाए आपे आप मिल रहया सहजे सहज समावणिया गुरमुख होवे सो इक्कस क्यों लिवलाए दूजा परम गुर शब्द जलाए काया अंदर वणज करे वा पारा नाम निधान सच पावणिया गुरमुख करनी हर कीरत सार गुरमुख पाए मोख द्वार अंधन रंग रता गुण गावे अंदर महल बुलावणिया सतगुरु दाता मिले मिलाया पूरे पाग मन शब्द वसाया नानक नाम मिले वड्याई हर सच्चे के गुण गावणिया माज महला तीजा आप वंजाए ता सब किछ पाए गुर सबदी सच्ची लिवलाए सच वणन जै सच संग्रह सच व्यापार करावणिया हों वारी जियो वारी हर गुण अंधन गावणिया हों तेरा तू ठाकुर मेरा शब्द वड्याई देवणिया रहाओ वेला वक्त सब सुहाया जित सच्चा मेरे मन भाया सच्चे सेवे सच वड्याई गुर कृपा ते सच पावणिया पाओ भोजन सतगुरु तुठे पाए अनरस चूके हर रस मन वसाए सत संतोख सहज सुख बाणी पूरे गुरते पावणिया सतगुर ना सेवे मूरख अंध गवारा फिर ओए किथों पाएन मोख द्वारा मर मर जमे फिर आवे जमदर चोटा खावणिया शब्दे साफ जाने ता आप पछाणे निर्मल बाणी शब्द वखाणे सच्चे सेव सदा सुख पाएन नौनिध नाम मन वसावणिया सोथ
तूफान सुहाया, जो हरमन भाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अंदिन हर साला है साचा, निर्मल नाद बजावणिया। मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूर कमावन दुख लागे पारा, परमे पूले फिरन दिन राती, मर जन्मे जन्म गवावणिया। सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर के शब्द आधारा, नानक नाम मिले वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया। माज महला तीजा, तेरिया खानी तेरिया बाणी, बिन नावे सब परम पुलानी, गुर सेवा ते हर नाम पाया, बिन सतगुर कोई न पावणिया। हौ वारी जियो वारी हर सेती चित लावणिया, हर सच्चा गुर भक्ति पाई है, सहजे मन वसावणिया। रहाओ सतगुर सेवे ता सब कुछ पाए, जे ही मनसा कर लागे ते हा फल पाए, सतगुर दाता सबना वस्तू का, पूरे पाग मिलावणिया। एहो मन मैला इक ना त्याए, अंतर मैल लागी बहु दूजे पाए, तट तीरथ दिसंतर पवे अहंकारी, होर वधेरे हौ मैं मल लावणिया। सतगुर सेवे ता मल जाए, जीवत मरे हर स्यों चित लाए, हर निर्मल सच मैल न लागे, सच लागे मैल गवावणिया। बाज गुरु है अंग गुवारा, अज्ञानी अंधा अंध अंधारा, बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे, फिर बिस्ता माए पचावणिया। मुक्ते सेवे मुक्ता होवे, हौ मैं ममता सबदे खोवे, अंदिन हर जियो सच्चा सेवी, पूरे पाग गुर पावणिया। आपे बख्शे मेल मिलाए, पूरे गुरते नाम निध पाए, सच्चे नाम सदा मन सच्चा, सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर न जानो, गुर सबदी हर अंतर पछाणो, नानक नाम मिले वडियाई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, ऐसे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे शब्द राचे, सच्चा सेवे सच कमावे, सच्चो सच कमावणिया। हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया, सच्चे सेवे सच समावे, सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे, दूजे पाए माया मन परमावे, माया मोह सब सुध गवाई, कर अवगुण पछोतावणिया। सतगुरु मिले तां तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना, मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उधारे, सच रते सदा बैरागी, हौ मैं मार मिलावणिया। अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविध मनसा त्रिविध माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, चौथे पद की सार न पावणिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जन राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अखा पारा, हर रस रस गुण गावणिया। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावे, सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थाप उथापे, गुरमुख जात पत सब आपे, नानक गुरमुख नाम ते आए, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत परलो सब दे होवे, सब दे ही फिर ओपत होवे, गुरमुख वरते सब आपे सच्चा, गुरमुख उपाय समावणिया। हौ वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया, गुरते सांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाओ गुरमुख तरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडाणी, सो निगुरा जो मर मर जमे, निगुरे आवन जावणिया। तिन करते इक खेल रचाया, ताया शरीर है विच सब किछ पाया, शब्द भेद कोई महल पाए, महले महल बुलावणिया। सच्चा साओ सच्चे वणजारे, सच वणजै गुर हेत अपारे, सच विहा जै सच कमावे, सचो सच कमावणिया। बिन राशि को वत क्यों पाए, मन मुख पूले लोक सवाए, बिन राशि सब खाली चले, खाली जाए दुख पावणिया। एक सच वणजै गुर शब्द प्यारे,
आप करें सगले कुल सारे आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावने आ। अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले मन मुख अंधे फिरे बेताले जिथे वत होवे तिथो कोई न पावे मन मुख परम कुलावने आ। आपे देवे शब्द बुलाए महली महल सहज सुख पाए नानक नाम मिले वड्याई आपे सुन सुन त्यावने आ। माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई हर चेतो अंत होए सखाई हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी सतगुर कह पाए पावणिया। हों वारी जियो वारी आप निवारणिया आप गवाए ता हर पाए हर स्यो सह समावणिया। रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया सतगुर सेव सदा सुख पाया बिन भागा गुर पाईए नाही सबदे मेल मिलावणिया। गुरमुख अलिपत रहे संसारे गुर के तकिए नाम आधारे गुरमुख जोर करे क्या तिसनो आपे खप दुख पावणिया। मनमुख अंधे शुद्ध न काई आत्म काती है जगत कसाई निंदा कर कर बहु पार उठावे बिन मजूरी पार पहुंचावणिया। एहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली सदा संभाले को नाही खाली जे ही वासना पाए ते ही वरते वासु वास जनावणिया। मन मुख रोगी है संसारा सुखदाता विसरिया अगम अपारा दुखिए नित फिरे बिल्ला दे बिन गुर सांत न पावणिया। जिनकी ते सोई विद जाने आप करे ता हुक्म पछाणे जेहा अंदर पाए तेहा वरते आपे बाहर पावणिया। तिस बाजो सच्चे मैं होर न कोई जिस लाए लय सो निर्मल होई नानक नाम वसे कट अंतर जिस देवे सो पावणिया। माज महला तीजा अमृत नाम मन वसाए हौ मैं मेरा सब दुख गवाए अमृत बाणी सदा सलाहे अमृत अमृत पावणिया। हौ वारी जियो वारी अमृत बाणी मन वसावणिया अमृत बाणी मन वसाए अमृत नाम ते आवणिया। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी अमृत वेखे परखे सदा नैनी अमृत कथा कहे सदा दिन राती अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रता लिव लाए अमृत गुर प्रसादी पाए अमृत रसना बोले दिन राती मन तन अमृत पियावणिया। सो किछ करे जो चित न होई किसदा हुक्म मेट न सके कोई हुक्मे वरते अमृत बाणी हुक्मे अमृत पियावणिया। अजब कम करते हर केरे त्यो मन पूला जांदा फेरे अमृत बाणी स्यो चित लाए अमृत शब्द बजावणिया। खोटे खरे तुद आप उपाए तुद आपे परखे लोक सवाए खरे पर खजाने पाए खोटे परम पुलावणिया। क्यों कर वेखा क्यों सलाही गुर प्रसादी शब्द सलाही तेरे पाने विच अमृत वरसे तू पाने अमृत की आवणिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेवे हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुखदाता पी अमृत सब कुख ले जावणिया। माज महला तीजा अमृत वरसे सह सुवाए गुरमुख विरला कोई जन पाए अमृत पी सदा तृप्ता से कर कृपा तृष्णा बुझावणिया। हौ वारी जियो वारी गुरमुख अमृत पियावणिया रसना रस चाख सदा रहे रंग राती सहजे हर गुण गावणिया। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए दुबदा मारे इक स्यों लिवलाए नदर करे ता हर गुण गावे नदरी सच समावणिया। सदना उपर नदर प्रभ तेरी किसे थोड़ी किसे है कणेरी तुझते बाहर किछ न होवे गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा अमृत परे तेरे पंडारा बिन सतगुर सेवे कोई न पावे गुर कृपा ते पावणिया। सतगुर सेवे सो जन सो है अमृत नाम अंतर मन मोहे अमृत मन तन बाणी रता अमृत सह सुनावणिया। मन मुख पूला दूजे पाए खुआए नाम ना लेवे मरे बिख खाए अन दिन सदा विष्टा में वासा बिन सेवा जन्म गवावणिया।
अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आमणिया। आपे आप निरंजन सोई, जिन फिर जी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवें सह सुभाए, सच्चे सबद सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावणिया। हो वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच ध्यान से सच राते, सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आस वखानणिया।

गुर के सब सदर है समाए, सच सलाही सब खट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के शब्द रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच निश्चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सलाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हों वारी जियो वारी, सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर सब सलाही, सबदो सुन पिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, होमे मैल गुर शब्दे तोवे, निर्मल वाजे अनहद सुन बाणी, दर सच्चे शोभा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो सब दे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहे, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले छाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मन मुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे भाए, नानक नाम वसे मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सोहे, अत उजल नाम ते आवणिया। हौ वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावणिया, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुहावणिया। रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए, गुर के पै उजल होमे मल जाए, सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, शब्दे नृत करावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोहया जमकाले, माया मोह इस मने नचाए, अंतर कपट दुख पावणिया। गुरुमुख भगत जा आप कराए, तन मन दाता सह सुभाए, बाणी वजह शब्द वजाए, गुरुमुख भगत साए पावणिया। बहुताल पूरे वाजे वजाए, ना को सुने ना मन वसाए, माया कारण पिड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता, गुर के शब्द सदा हर चाए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत न पाए कोई, नानक नाम गुर भगत।

तेरे पद सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सहज समावणिया, रहाओ कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रह सुख दाता, गुरमत सहज समावणिया, काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण न चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया, काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दोही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सहज समावणिया, कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब है सुखदाता, अंदर नाम ते आवणिया, अंतर ज्योत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विवास सदा सुख पाया।

तो पंडित होई आसरे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौनिद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे नेह कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसै हो मैं मार एनस प्रीत सबद साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इस नाम करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा घट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसै कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया तै गुण दीसे।

माया मोह जलाए सो हर्ष्यो चित लाए हर दर मैली सो बापावण्या रहाओ। देवी देवा मूल है माया सिमरत फास जिन उपाया काम क्रोध पथरिया संसारे आए जाए दुख पावण्या। तिस विच ज्ञान रतन इक पाया गुर प्रसादी।

गुरुमुख सदा रहे रंग राती, मिल सच्चे शोभा पावण्या। मनमुख कर्म करे अंकारी, जुए जन्म सब बाजी हारी। अंतर लोभ महागुबारा, फिर आवन जावण्या। आपसे करता दे वड़ियाई, जिनको आप लिखत तुर पाई। नानक नाम

सोतम मंता सो वडसाहा जो गुरचरणी मन लावण्या। पहलो देते रिजक समाहा पिछो देते जंत उपाहा तुझे वरदाता अवर न स्वामी लवे न कोई लावण्या। जिस तू तुथा सो तुझ त्याए सात जना का मंत्र कमाए आप करे सगले कुल तारे तिस दरगे खाक न पावण्या। तू वड्डा तू ऊंचो ऊंचा तू बेअंत अत मूचो मूचा।

सो बत्ता कौन सो गिरही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो। किन बिद बांदा किन बिद छूटा किन बिद आवन जावन टूटा कौन कर्म कौन ने कर्मा कौन सो कह कहाए जियो। कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सन्मुख।

कौन सो चाल जित पार ब्रह्म ते आए, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता, गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता, तन गिर ही उदासी गुरुमुख, गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा, गुरुमुख आन जान टूटा, गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा, गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे, गुरुमुख विद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तावत रहता, गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता, गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए, गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बनाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस से होयो अनंता, नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला, जी प्राण मान सुख दाता, तू करे सोई सुख पावण्या। हों वारी जियो वारी गुरमुख मन तन पावण्या, तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवे ना लावण्या रहाओ, तेरा कीता जिस लागे मीठा, कट कट पार।

कंडे चाड़े कर कृपा दास नव निहाले गुण गावे पूरन अविनाशी कह सुन तोट ना आवणिया ऐथे ओथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अगर न पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख समाली मंतन अंतर तुद नगर निहाली।

ते प्रभ अवगाहिया ए रस पोगण पातशाहिया मंदा मूल ना उपजियो तरे सच्ची कारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर हुआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना।

0: चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे कट कट एक वरतदा जल थल महियल पूरे पाप विनाशन सेविया पवित्र संतन की दूरे सब छदाई खसम आप हर जप पई थरूरे करते किया कपार सो दुष्ट मोए होए मूरे नानक रत्ता सत नाए हर वेखे सदा हजूरे
1: बारह माह मांझ महला पंजवा कर चौथा

जल बिन साफ कुमलावती उपजै नाही दाम, हर ना न मिलिए साजने कत पाए विश्राम। जित पर हर कंस ना प्रगटे पथ नगर से ग्राम, सर्व सिगार तंबोल रस सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंक विहूनिया।

मानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाव न जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे

तब तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा किस लगे जिस मन हर

कुमार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिन कै सब बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवारन हार सारों तिना सुहागणी जिन राम नाम उरहार पादोए परम कुलानिया दूजे लगा हेत लख सिगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन प्रेत पकड़ चलाएन दूत जम किसे ना देनी पेत छंद खड़ोते खिने माहे जिन सु लगा हेत हाथ मरोड़े।

इच्छुकुनी वड पागिनी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाय। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। हालत पलक सब

सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निज चरण हरे।

हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैन। हर फिर बिन चैन न पाये खोज दिते सब गैन आप कमाने विछड़ी दोष न काहू देन कर।

नानक जीवे जप हरी दोष सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरे सो हरिया होवे जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमानी थाओ हर ओट गही मन

जिन रच रचिया अति सेन जाने अंधा अंध कमाए। जा पजे ता ठीक होवे कारक करी ना जाए। नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार न पाए। महला दूजा देंदे थावो दित्ता चंगा मन मुख ऐसा जानिए। सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आंख वखानिए। अंतर बहके कर्म कमावे सोचो कुंडी जानिए। जो कर्म कमावे तिस कर्म नाव होवे पाप कमाने पापी जानिए। तू आपे खेल करें सब करते क्या दूजा आंख वखानिए। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले। विन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियानिए। नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगुण सुजानिए। पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे तंदे लाया। मोठ गौली पाए कै तुद आपो जगत खुआ।

मर जम में आया जाया दिन सतगुरु मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम की आई है सुख रजा जा कुछ पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत।

अस संजोग मेल मिलाया, तिन्ही किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हरखों सोग विजोग उपाय खपाया, मूरख गणत गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सो होग न चले।

परया पर तोवा आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू होवा नानक अंधा होए कै दसे राह सब समुहाए साथे अग्गे गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा आगू जापे पौड़ी महारुति सब तू करी मूर्त विचारा तू गणते तिने न पायो सच्चे अलख अपारा पया मूर्ख आसी है जिस लब लोभ अहंकारा नाव पढ़िए नाव बुझिए गुरमति विचारा गुरमति नाम तन खत्या भगती परे पनारा निर्मल नाम मन्या दर सच्चे सच्चियारा जिसदा जियो प्राण है अंतर जोत अपारा सच्चा साहो इक तू होर जगत वनजारा। श्लोक महला पहला। मेहर मसीत सिदक मुसल्ला हक हलाल कुरान सरम

चौथा पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज माया अहंकार चुकावे तज काम कामनी मोह तजे ता अंजन माही निरंजन पावे तज मान अभिमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिव लावे नानक साचा मन वसे साच सब

जामन नाही सच्चा सोए। क्या मेवा क्या त्यो गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या सेज खाली, कीजे भोग विलास। क्या लश्कर क्या नेब खवासी, आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विन, सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोहरा होवे हाथ मरिए चखिए। सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर दीवानिए। सुरमानी है कार खसम पठाया, तबल बाज बीचार सबक सुनाया। एक होए असवार, इतना साखती,

कण लया तन चार दो कुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बैठ जो दर रहे सोब रहे नानक अजब जिठ मैला पहला वेख जे मिठा कटिया कट कुट बद्दा पाए कुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए रस कस कत्तर पाई है तपे तै बिल लाए पीसो फोग संभाली है दिच्चे अग जलाए नानक मिठे पत्री है वेखो लोका आए पावड़ी इकना मरन ना चित आस कने रिया मर मर जम्मे नित किसे ना के रिया आप नड़े मन चित कहन चंगे रिया जमरा जय नित नित मन मुख हे रिया मन मुख लून हराम क्या ना जाने आ बद्दे करन सलाम खसम ना पाने आ सच मिले।

वेदा गंध बोले सच होए, मोया गंध ने की सत होए, एक गंध वरते संसार, मूरख गंध पवे मोह मार, नानक आखे एवो विचार, सिफती गंध पवे दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार।

पौड़ी। सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमती आप गवाए सच पछाणिया। सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया। मनमुख सदा कूड़ियार परम कुलाणिया, विष्टा अंदर वास साध ना जानिया। गिन नामे दुख पाए।

की कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाई नाम से आई है, दूजी कार है लग जन्म गवाई है, बिन नामे सब विश्व कै जय खाई है, सच्चा सबल सलाह सच समाई है।

है कर्म पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाइए मुट्ठी तंदे चोर महल ना पाइए इन्हें चित कठोर सेव गवाइए जित काट सच न पाए सो पन कढ़ाइए क्यों कर पूरे वट तोल तुलाइए कोई ना आखे तत हो मैं

राखी बहुर न पाई ताओ। सती पैरी सत पला बही है पड़िया पास, उथे पाप पुन बिचारी है कूड़े कत्ते रास। उथे खोटे सती है खरे की चैसा बास, बोलन

तू सच्चा दातार नित देवे चरण सवाया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा, दिखिया आख बुझाया सुस्ती सच समेओ, तिनको

सिर पर चलिए सही है पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पाओ राख्या पाए सवार। रहाओ तै तन अगन पखे पै नाल, तै पाओ कड़िए सब दुसवार। तै बिन काड़त कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह स्याणप पवे न पाओ। नानक मन मुख बोल।

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना

बेहतर है। जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आसा समान, किस विच पूछ बहुत नैसान।

कंचन चपल बुद्ध का खेल, नौ दरवाजे दसवां द्वार, गुजरे ज्ञानी यो विचार, कत्ता बकता सुनता सोई, आप बिचारे सो ज्ञानी होई राव, देही माटी बोले कौन, गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन, मुई सुरत बाद अंकार, ओ नाम हुआ जो देखन हार, जय कारण पट तीरथ जाही, रतन पदार्थ पट ही माही, पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाने, पीतर हो दी वत न जाने, हाउ नाम हुआ मेरी मुई बलाए, ओह नाम हुआ जो रहा समाए, कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर नाया, गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन गूजे माने नाओ, ताके सब बलिहारे जाओ, आप पुलाए ठौर न ठाओ, तू समझावे मेल मिलाओ, नाम मिले चले

हुकम संजोगी गढ़ दस द्वार पंच वसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारन हार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस पावे कर्म लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साग मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन तन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कै लागू पाए। गौड़ी महला पहला।

रहा होए, पर पंच व्याप रहा मन दोए, फिर नारायण करे सो होए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एकंकार। गौड़ी महला पहला, उल्टो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन दस द्वार, त्रिभुवन वेदिया आप मुरार। रे मन मेरे कामना की जय, मन माने अमृत रस पी जय रहा। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर पई कर करते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विचार करो किस काम। नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो पर कर जाओ, किस जाचो नाही को थाओ, नानक गुरुमत।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुर मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर प्रबला।

आ गए होए, जो तिस पाना सोई हुआ, अगर न करने वाला दुआ, न जाना कर्म केवट तेरी दात, कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ, तू एवड दाता देवन हार, सोत नाही खुद भगत पंडार, किया गर्द न आवे रात, जियो पिंड सब तेरे पास, तू मार जीवाले बख्श मिलाए, जो पावी त्यों नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे परोसे तेरे, तन में मैल नाही मन राता, गुरबचनी सच शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत शरणाई, गौड़ी महला पहला, जिन अपख कहाया अप्योपी आया, हम पै विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले सावास, जाए सवारे सांझ बिहाल, इत उत मन मुख बांधे काल, एनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे, गौड़ी महला पहला।

सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा करना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित भुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार न पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जा कह हृदय वस्या हर सोई, गुरुमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया, आशा माहे निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी इहो संसारो, लग लोभ मुझ

हाँ तुझ आसा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करें चोरी बुरियारी।

मुंदरा से कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंसाता पंच चेले वश की जय रावल इहो मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पावसता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मूंड मुंडाए जे गुर पाये हम गुर की नी गंगा पार त्रिभवन तारण हार स्वामी एक न चेत समझाता कर पटंग गली मन लावस संसा मूल न जावस्ता एक चरणी दे चितलावे लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट खना रहाओ काया कमली हंस इआना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नागी दाजे फिर पाछे पस्तानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जय रे मन एको साहिब पाई रे तेरे तीन गुणा संसार समावे अलखना लखना जाई रे रहाओ सकर खंड माया तन मीठी हम तो पंड उचाई रे रात अनेरी सूजस नाही लज टूकस मूसा पाई रे मन मुख करे ते का दुख लागे गुरमुख मिले बटाई रे जो तिन किया सोई हुआ कितना मेटिया जाई रे सुबर भरे ना होवे उने जो राते रंग लाई रे तिन की पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किस पाई रे गौड़ी चेती महला पहला कब की माई बाप कब चेरा किदू था वो हम आए अगन

एक ते पंख उड़ाए हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा लेके तकड़ी तोलन लागा।

अगम बराबर तपे पीतर वगै काती प्रणवत नानक हुकुम पछाणे सुख होवे दिन राती गौड़ी बैरागन।

तरे अंश न चाहया जाए, अंश को चाहन जो गए से आए अंश गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पाग होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई।

तेरा सौ मिले है वार वार हो जाओ जियो। मैं बन जारन राम की तेरा नाम वखरवा पार जी रहाओ। कोकिल होवा अंब बसां सहज सबद विचार सहज सुभाए मेरा सौ मिले दर्शन रूप अपार। मछली होवा जल बसां जी जंत सब सार उरवार पार मेरा सौ वसे हो मिलोंगी बां पसार। नागन होवा तर वसां शब्द वसै कौ जाए नानक सदा सुहागणी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौरी पूर्वी

पूरे पाग मिले गुर आए साचे सहज साथ समाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए गुर ते सांत वसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए। बाद गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सत्य सच्ची पत होए। किसनो कही है दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे साथ समावा। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा सोथाओ सच मन निर्मल होए सच निवास करे सच सोए सच्ची बाणी जुग चारे जापे सब किस साचा आपे आपे। कर्म होवे सत्संग मिलाए हर गुण गावे बैस सोखाए रहाओ। जलो ए जेवा दूजे पाए हर वस न चाखे फीका आलाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावे दुखिया चलिया रोए। रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए गुर कृपा ते सच समाए साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार। नाम समावे जो पांडा होए उंदे पांडे टिके ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस शब्द।

गावत रहे जिस सतगुरु पावे मन सन राता नाम सुहावे रहाओ एक गावे एक भगत करे नाम न पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना तिर राख्या सदा उद्धार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच तपे बहुत दुख पावे नचिए टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वछल भगत कराए सोए सच्ची भगत विच्चों आप खोए मेरा प्रभु साचा सब विद जाने नानक बसे नाम पछाने गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे देवड़ियाई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मित धारा गुर अंकत मार जीवा लनहारा मन असाद सादे जन कोए अचर चरे ता निर्मल होए गुरमुख एव मन

नानक गुरमुख नाम पछाणे गौरी ग्वारे री महला की जा होमे विच सब जग बौराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना तंदा करत्या अंजन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हों मैं मार गुर शब्द।

जित सेवे दरगह पत परवाना, हर के नाम विटो बल जाओ, तू विसरे तद ही मर जाओ रहाओ, तिन तू विसरे जे तुद आप भुलाए, तिन तू विसरे जे दूजे पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, मनमुख अज्ञानी जो नी पाए, जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए, जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

तेरी अकथ कथा गुर शब्द वखाणी रहाओ। जय सतगुरु तै सत्संगत बनाई, जय सतगुरु सहजे हर गुण गाई, जय सतगुरु तहां हूं मैं शब्द जलाई, गुरुमुख सेवा महली थाऊं पाए, गुरुमुख अंतर हर नाम वसाए, गुरुमुख भगत हर नाम समाए।

आई तहां गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई आपे सुतिया देह जगाई किसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम समाए नानक नाम रते हर नाम समाए।

असंत अनाड़ी कदे न बूझे, कथनी करे ते माया नाल लूजे, अंध अज्ञानी कदे न सीजे। इस जुग में राम नाम निस्तारा, बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, आस करे सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म काम ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम बिना को मुक्त न होई। गौड़ी महला तीजा ग्वारे री, सच्चा अमर सच्चा पातशाह हो, मन साचे राते हर वे परवाहो, सच्चे मैल सच नाम समाहो। सुन मन मेरे शब्द विचार, राम जपो पल जल उतरो पार रहाओ। परमे आवे परमे जाए, के जग जन्मया दूजे पाए, मन मुख न चेते आवे जाए। आप फुला के प्रत आप फुलाया, इहो जियो विडानी चाकरी लाया, मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया, कृपा कर सतगुरु मिलाए। एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए, नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सो जी पाए। हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई, गुरुमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ। आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावे सोए, हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सहज समावे सोए, दूजे पाए न तेरे आ जाए। हों मैं माया महा बिक खाए, पुत कुटुंब गृह मोह आजमाए, मन मुख अंधा आवे जाए, हर हर नाम देवे जन सोए, अंजन भगत गुर शब्दी होए, गुरमत विरला बूझे कोए, नानक नाम समावे सोए, नानक नाम समावे सोए। गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावे कोई, अखुट नाम तन हर कोट न होई, ऐसे सवा सुख दर शोभा होई, ए मन मेरे परम न कीजे, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजे रहाओ। सतगुर सेवे से महापुरुष संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखे उदारे, नाम रते पौजल उतरे पारे। सतगुर सेवे सदा मन दासा, हो मैं मार कमल पर गासा, अनहद वाजे निज कर वासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आस वखाणी, हम दिन जपें।

रोग हृदय नाम नित हर रस भोग गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ ज्ञान ज्ञान गुर शब्द है मीठा गुर कृपा से किने विरले चख डीठा कर्म कांड बहु करे अचार बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है क्या धरती मदे पानी नाही जैसे धरती मदे पानी प्रगासिया बिन पगा बरसत फिराही।

पुरुष हो एक है क्या ओए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे थे जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के सबल समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया उमरप जन्म न आही। गौड़ी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए। मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निदान ले दरगे ले छबाए। रहाओ लक्ष चौरासी परम दे मन हस आवे जाए, गुरु का शब्द न चीन्यो फिर जो नहीं पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए, अंदिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार, जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार। गौड़ी बैरागन महला तीजा, कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया, सो बावंती नार है गुरमुख गुण गाया। तेल कड़े गुण समले सौरे वास पाया, गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया। ससुरे पेय फिर वसे करो कित विद पाये, आप निरंजन अलख है आपे मेलाये। रहाओ आपे ही प्रभु देह मत हर नाम ते आई है, वड़पागी सतगुरु मिले मुख अमृत पाई है। हो मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाई है, सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाई है। मन मुख गर्व न पायो अज्ञान ए आने, सतगुर सेवा ना करें फिर पछताने। गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने, मेरे करते ए वह पामदा मन मुख परमाने। मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा, हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है, हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभु जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागन महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत विचारा, मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा। शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा। हर कित विद पाई है संत जनो जिस देख हो जीवा, हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा। रहा हो हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर

हर शरणागत राखले हो मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया पर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा चौथा चौक दे सतगुरु प्रसाद पंडित खास सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर पद मन मेरे।

सूद वैश पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन त्यावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बने आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम समाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए। मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल पारा। नरपत प्रीत माया देख पसारा, हर जन प्रीत जपे निरंकारा। नर प्राणी प्रीत माया तन खाते, गुर सिख प्रीत गुर मिले गलाटे। जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए। भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए। हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोच पूर हमारी। रहाओ चटवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे। गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बछरे प्रीत खीर मुख खाए। हृदय बिबसे देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए। और सब प्रीत माया मोह काचा, बिनस जाए पूरा कछ पाचा। जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा, जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी। जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी। गुर सिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लह जाई। राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया, तावत पंच रहे हर त्याया। अंदिन नगरी हर गुण गाया, सतगुर पग तूर जिना मुख लाई। तिन कूर त्यागे हर लिव लाई, ते हर दरगे मुख उजल पाई। गुर सेवा आप हर पावे, कृष्ण बल कद्र गुर पग लग त्यावे। नानक गुरमुख हर आप तरावे, नानक गुरमुख हर आप तरावे। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी। हर आपे रब रहा बनवारी, हर आपे तप पापे लाए तारी। ऐसा मेरा राम रहा परपूर, निकट वसे नाही हर दूर। रहाओ हर आपे शब्द सुरत तुम आपे, हर आपे वेखे विकसे आपे। हर आप जपाए आपे हर जापे, हर आपे सारंग अमृत तारा। हर अमृत आप पियावन हारा, हर आप करे आपे निस्तारा। हर आपे बेड़ी

चौथा साहो हमारा तू कणी जैसी तू रात दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग से हो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वंज करे व्यापारिये अनंत तरंगी दुख माया कोई जे है वंज हर लाया फल से हाथिन पाया हर हर वंज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक साहु।

आए। हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए। त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छिड़ाए। मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर से।

सो जंतर है जो दासन दास जन नानक नाम से आया गुरुमुख परगास। गौड़ी बैरागन महला चौथा। नित दिन सरात लालच करे पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर पार उठाया। जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै कम हर लाया। मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै कम लाए। नित हर गुण गावे हर नाम समाये रहाओ। नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया। कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया। तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया। नित सौदा सूद की कै बहु पात कर माया कै ताई। जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाए। जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाए। जितनी भूख अन रस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्तिया फिर भूख ना लागे। गौड़ी बैरागन महला चौथा। हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हौ कुर्बानी गुर अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। मत निर्गुण हम मैले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दया।

सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदब मेरा सखा।

चलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुबत है मोह मीठा माया, कर मंदर खोल खुशी मन अन रस लाया।

जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागन महला चौथा। जो जननी सुत जन पाल की राखे नगर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुरु गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के।

ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति अवसर ले चढ़ाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा, जिस मिले मन होए आनंद, सो सतगुरु कही है मन की दुविधा बिरस जाए, हर परम पद ले।

कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिसको हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे।

गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा, हर रंग पीनी मेरी चोली, अपने हर पद की हौ बोली, जब हम हर सेती मन मानिया, कर दीनो जगत सब गोल अमोली, रहाओ करो विवेक संत जन पाई, खोज हृदय देख टंडोली, हर हर रूप सब जोत सवाई, हर निकट वसे हर कोली, हर हर निकट वसे सब जग के, अपरंपर पुरख अतोली, हर हर प्रगट कियो गुर पूरे, सिर वेचियो गुर कह मोली, हर जी अंतर बार तुम शरणागत, तुम वड पुरख वडोली, जन नानक अंदिन हर गुण गावे, मिर सतगुर गुर वे चोली, गौरी पूर्वी महला चौथा, जग जीवन अपरंपर स्वामी, जगदीशर पुरख विदाते, जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी, तित मार्ग हम जाते, राम मेरा मन हर सेती राते, सत संगत मिल राम रस पाया, हर रामे नाम समाते, रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद, हर हर नाम हर साते, तिनके पाप दोख सब बिन से, जो गुरमत राम रस खाते, जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक, ते गुर संतोख सरनाते, दुर्मत मैल गई सब तिनकी, जो राम नाम रंग राते, राम तुम आपे आप, आप प्रभ ठाकुर, तुम जेवड अवर न दाते, जन नानक नाम ले ता जीवे, हर जपिए हर किर

सो सतगुर मेल मेरा प्राणे, राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूर मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर के बचन हर हम जाने। राव जितने रस अनरस हम देखे, सब तितने फीक फीकाने। हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय कचाने। जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने। जन नानक

मत गुरमत नाम समाने, गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है, स्वामी कहो किथे हर पहु नसी है। हर आपे बस ले प्रभ साचा, हर आप छदाए छुटी है। मेरे मन जप हर हर हर मन जपी है, सतगुर की शरणाई पज पो। मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटी है, रहाओ मेरे मन सेवो सो प्रभु सर्व सुख दाता। जित सेवे निज कर वसी है, गुरमुख जाए लहो कर अपना। कस चंदन हर जस कसी है, मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम। ले लाहा हर मन हसी है, हर हर आप दया कर देवे, ता अमृत हर रस चखी है। मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे, ते साकत नर जम कुटी है। ते साकत चोर जिना नाम विसारिया, मन तिनके निकट न फिटी है। मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर, जित सेवे है लेखा छुटी है। जन नानक हर प्रभु पूरे किए, खिन मासा तोल न कटी है। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे, मेरा जियो पिंड सब तेरी। दया करो हर दर्श दिखावो, मेरे मन तन लोच कनेरी। राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी, गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी। हर मिलिया आए प्रभ मेरी, रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी। साबिद तुम हर जानो मेरी, अंदिन नाम जपी सुख पाई। नित जीवा आस हर तेरी, गुर सत गुर दाते पंथ बताया। हर मिलिया आए प्रभ मेरी, अंदिन अनद पयावड पागी। सब आस पुजी जन केरी, जगन्नाथ जगदीशर करते। सब वसगत है हर केरी, जन नानक शरणागत आए। हर राखो पै जन केरी।

जाने आगे जो हर राखे त्यों ठाने हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिल साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है राव सात हर रस सा।

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर

आया हम अपराध पाप बोकी ने कर दुष्टी चोर चुराया अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद गुरमत मनुआ गावे बदपागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर लिवलावे रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जिहवा हर गुण गावे मन रसक रसक हर रस

रामा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोष पिता कर गुर पुरख अजन्मा, बड़ पागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। बड़ पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना। आवो संतो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा लैलाहा जियो। कर सेवा संता।

ब्राह्मण करी हाजियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुरु दीपक ज्ञान सदा मन गलिया जियो हर तुठे टुल टुल मिलिया जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर टोले।

मन अंधन अनग्रह जियो हर पायरा वड पा गई मेरे गोविंदा नित लैला मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे वेखे।